हम आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: हम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से और कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले वंदनवार चिंतन 6:05 पर, 6:30 पर कार्यक्रम विवरण, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, 7 बजे भूले बिसरे गीत और 7:30 बजे हमें रही प्यार की। सुनते हैं समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

0: नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। गौतम बुद्ध का ये कथन है कि क्रोध को मन में दबाए रखना वैसा ही है जैसे किसी गर्म कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकने की कोशिश करना। इससे हम स्वयं भी जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनेस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जीवन पर और इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे 9:30 पर। 10 कार्यक्रम होगा पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे। सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1 सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा और 2 का समय त्रिवेणी कार्यक्रम का। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन।

शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत झलकी एक कुंवारा, लेखक हैं अशोक व्यास, निर्देशक हैं अरविंद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और रात 10 बजे का समय है छाया गीत कार्यक्रम का। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर और रात 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 215।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां 2 दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, अब तक हमने जो चर्चा की है, जो उदाहरण आपने हमें दिए, इसमें विविध तालों पर आधारित गीत जिसमें तबला वाद्य की प्रमुखता थी
2: जी,
1: उस पर बात हुई। और फिल्म संगीत की शुरुआत में तो तबला एक प्रमुख ताल वाद्य था संगति का।
2: हाँ हाँ।
1: लेकिन फिर ढोलक भी एक ताल वाद्य के रूप में आया।
2: हाँ।
1: तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला तब, ताकि उसे ढोलक के साथ आगे बढ़ना था।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है
1: जी, जी,
2: वो ताल कैसे इसमें भी आए हैं इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए
1: जी।
2: तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का वो आया ढोलक वाद्य के संग में। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफ़ी लोकप्रिय वाद्य है और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता ये है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है
1: जी,
2: ढोलक में शाही नहीं है,
1: शाही नहीं होती,
2: वो खुला बजता है।

0: है,
1: जी
0: तो ये दोनों का जब मेल होता है तब एक कर्णमधुर ऐसा संगीत उसमें से उत्पन्न होता है।
1: जी
0: तो हमने जैसे कहा कि कैहरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं
1: जी
0: कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं।
1: जी जी
0: तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी
1: जी
0: अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो कैहरवा है वो कैहरवा केवल धागे नाती ना कधिन, धागे नाती ना कधिन, ये मूल ठेका जो है ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है
1: हाँ
0: तब ढोलक का अपना एक कहरवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर

0: तो ये कहरवा जो है, कहरवा ढोलक और तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा, तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई।
1: क्या बात है। और मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे?
0: इसमें मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है
1: जी,
0: वो सुनाना चाहूँगा, दिल पुकारे आरे आरे।
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत है।
0: जी जी जी
1: जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें हैं, एस डी बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।

0: श्रोताओं, ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीतकार सचिन देव बर्मन, ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखाई दी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के संयोग की, इससे जो नाद बना और ताल संगति हुई।
1: हाँ।
0: लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो ताल वाद्य हैं,
1: हाँ,
0: उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ।
1: हाँ जी।
0: कोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है?
1: बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी
0: जी,
1: क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे हैं कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी संगत कर रहा है तबला
0: जी,
1: और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं, वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला दो अंतरों के बीच में
0: जी,
1: तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे परकशन उसमें बज रहे हैं।
0: जी जी, ऐसे कई गाने हैं।
1: हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूंगा
0: जी,
1: नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले ले, राम और श्याम फिल्म
0: जी,
1: का
0: जी,
1: गीत
0: बहुत सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का बड़ा अच्छा मेल देखने को मिलता है
1: जी।

0: श्रोताओं, फिल्म राम और श्याम का गीत आप सुन रहे थे, रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार नौशाद। और इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हमारी आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रंगीन रातें इस फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, केदार शर्मा के बोल और संगीत है रोशन का।

रंगीन रातें फिल्म का ये गाना आपने सुना, आंखों की बात इसमें कही गई है। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं पटरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मीना कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं राज हट इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना जानेसर अख्तर का लिखा हुआ, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम श्रीमती 420।

0: छोड़ के कहाँ जाओगे?
1: अच्छा?
0: तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान लो पहचान।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, अभी समय हो चला है एक अंतराल का।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर अब आपको सुनवाने जा रहे हैं देवदास फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कैफी आजमी का लिखा और कमल मित्र का संगीतबद्ध किया ये गाना, आशा भोंसले की आवाज़, फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं अमर सैगल। इस फिल्म का गाना केएल सैगल की आवाज़ में, पंडित भूषण का लिखा हुआ गाना, पंकज मलिक का संगीत है।

0: केएल सहगल के गाए इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट
2: वीको टर्मरिक।

गया है बुधवार और आज है नमस्कार उदयपुर में मिड वीक वाइब्स। इसमें आप सुनेंगे टुडेज डायरी में आज एक खास दिन के बारे में और एक खास शख्सियत डॉक्टर ट्रेसी थॉमस के बारे में जानेंगे हम इंस्पिरेशनल जोन में, और भी बहुत कुछ खास जैसे कि फीफा से जुड़े रोचक तथ्य क्या है और साथ साथ लिसनर्स कनेक्ट भी होगा, यानी कि आपके जो हमें मैसेज मिलेंगे उन्हें हम पढ़ेंगे प्रोग्राम के दौरान। तो सुनना ना भूलें नमस्कार उदयपुर मिड डे वीक के तहत। आइए सुने विविध भारती मुंबई से, हम है राही प्यार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है CID, इस फिल्म का मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें हैं, जानेसर अख्तर के बोल हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको घर फिल्म का गाना सुनवाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलजार के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आंखों आंखों में इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने एक अंतराल के बाद।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: नमस्कार उदयपुर, इसमें आज आप सुनेंगे मिडवीक वाइब्स। टुडेज डायरी में इस बार होगा बहुत कुछ स्पेशल। जानेंगे क्यों खास है इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। साथ ही इंस्पिरेशन जोन में जानेंगे भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में, जिनकी कहानी आपको जोश से भर देगी। और हाँ, स्पोर्ट्स लवर फीफा कप की शुरुआत से लेकर उस कहानी तक जिसने चोरी हुई फीफा ट्रॉफी मिलती है, सब कुछ जानेंगे सुबह नमस्कार उदयपुर में। और अपने मैसेज भेजने के लिए तैयार रखें अपना व्हाट्सएप। ट्यून इन रहिए आकाशवाणी उदयपुर, रेडियो लेक सिटी।

अब आपको सुनवाएंगे तीन देवियां फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। आज इन गीतों में आप सुन रहे हैं आंखों की या नयन की बातें। आज है विश्व नेत्रदान दिवस, तो अपनी आंखों का ख्याल रखिए

हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धनवान फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ गाना और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: बुधवार सुबह 10 बजे 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर प्रोग्राम भूली हुई यादें, और यादों में कोई एक साल, उस साल की फिल्में, उस साल की फिल्मों के गाने, थोड़ी थोड़ी बातें और बहुत कुछ। जरूर सुनिए बुधवार सुबह 10 बजे प्रोग्राम भूली हुई यादें, ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।
1: ये है आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी 101.9 FM बैंड पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़, और उसके बाद फिर से लौटेंगे

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार

0: परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री

0: तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में

0: कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और POK में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों

0: सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियाँ औरों के नाम करना भी जिंदगी है।
1: बहुत सारी खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत सारे खूबसूरत विचार और आज का प्रोग्राम मिड वीक वाइब्स, नमस्कार, उदयपुर में आपके लिए और हमारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज है ज्ञान, प्रेरणा और खेल का ऐसा संगम जो हम सब के दिन को बना देगा सुपर हिट, यानी कि आंचल। आज का सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है।
0: बिल्कुल, तो कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त आंचल, और मेरे साथ है
1: ज्योति।
0: और ज्योति, आज है मिड वीक वाइब्स नमस्कार उदयपुर की शुरुआत हम कर रहे हैं टुडेज डायरी से, जिसमें हम चर्चा करेंगे सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, साथ ही देंगे कुछ स्थानीय खबरें, और प्रेरणा क्षेत्र में हम बात करने जाएंगे टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की।
1: और फन फैक्ट सुनना ना भूलें, जिसमें होगी जानकारी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जिसका आगाज होने जा रहा है कल, और साथ साथ होगा अगला सेगमेंट लिसनर्स कनेक्ट, जिसमें आज के प्रोग्राम से जुड़ी बातें और जानकारी जो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप अपने विचार साझा करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9462697568, हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं।

ज्योति कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। विश्व में अनेक संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ निवास करती और हर संस्कृति का अपना एक अनोखा इतिहास, दर्शन और जीवन शैली है। और जब इन अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद होता है तो यही बातचीत शांति, समझ और सहयोग का पुल बनाती है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

0: लगता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है और सिर्फ एक दूसरे की संस्कृति को समझने से ही हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। हमें इस दिवस को सिर्फ एक दिन नहीं अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और हमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच सम्मान और समझ का वातावरण बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल, सभ्यताओं का मिलन, मजहब, जबान, तौर तरीके जुदा सही, इंसानियत का दिल तो धड़कता है एक सा। तुम गुफ्तगू का सिलसिला बस थाम कर रखो, हर मसले का हल तो निकलता है एक सा। उदयपुर हमारे शहर में कई सारे विदेशी सैलानी आते हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी फॉरेन टूरिस्ट से बात करके आपको उनके कल्चर के बारे में कुछ मज़ेदार या अनोखी बात पता चली हो? हमें शेयर कीजिए अपनी उस मुलाकात के बारे में। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप सोच रहे हो हम किसी विदेशी जगह जाएंगे और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे, तो अपनी चॉइस, अपनी डेस्टिनेशन और जो चॉइस है किस जगह या किस नागरिक से मिलकर आप वहाँ की संस्कृति बारे में जानना चाहेंगे, हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपके मैसेज हम पढ़ेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है लिसनर्स कनेक्ट, और हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9462697568।
0: बिल्कुल।

0: ज्योति कार्यक्रम में अब बात करते हैं प्रमुख स्थानीय खबरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 60 जनजाति विद्यार्थियों को 21 जून से नवंबर तक सुखाड़िया विश्वविद्यालय को फैकल्टी निःशुल्क कोचिंग देगी। TRI निदेशक ने बताया कि विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग कोचिंग देगा। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं भारतीय संविधान, समसामयिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता के 80 कालांश होंगे। 15 जून तक छात्र आवेदन डाउनलोड कर विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करा सकेंगे।
1: चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ते हुए ताज़ा अपडेट्स में ये अपडेट है कि IIT कानपुर की ओर से BTEC और BS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 24 जून को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून है और पात्र विद्यार्थियों की सूची 20 जून को जारी की जाएगी। पैटर्न और मार्किंग स्कीम सहित सारी डिटेल्स आप संबंधित वेबसाइट पर, अधिकृत वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अगली अपडेट है हल्दीघाटी विजय के 450वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज सुबह 7:30 बजे गांधी ग्राउंड में राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन हो रहा है। 18 जून को हल्दीघाटी विजय दिवस है और इससे पहले 17 जून को जय

0: ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया पर महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ साथ आज उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए मतदान है, जो ऑनलाइन हो रहे हैं। देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है।
1: इसी के साथ ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 19 जून को यूसीसीआई सभागार में प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना विषयक राष्ट्रव्यापी परिलाभ वितरण कार्यक्रम होगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को देय परिलाभों का वितरण किया जाएगा और विभिन्न प्रावधान, लाभ और पात्रता पर चर्चा होगी।

0: यदि कल्पना करो एक ऐसा पल जब पूरा विश्व एक साथ सांस रोककर एक ही मैच देख रहा हो, एक गोल पर करोड़ों लोग खुशी से झूम उठे, वहीं दूसरी ओर एक हार पर आंखें नम हो जाए, यही जादू है विश्व कप का। आज के मिडवीक वाइब्स के रोचक तथ्य में हम बात करने जा रहे हैं फीफा विश्व कप से जुड़ी रोचक जानकारियों की।
1: बिल्कुल, इस बार का ये वर्ल्ड कप बहुत खास है और 11 जून 2026 से ये महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। और चलिए इस फुटबॉल फीवर में गोता लगाते हैं और जानते हैं फीफा के अनोखे फैक्ट्स। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1930 में। पहला वर्ल्ड कप खेला गया उरुग्वे में और उरुग्वे ने ही से जीता था अर्जेंटीना को हराकर। और आप जानते हैं उसी ने उसे होस्ट किया और वापस वर्ल्ड कप खिताब भी जीता। पर हैरान करने वाली कहानी होती है 1966 के वर्ल्ड कप से, जब इंग्लैंड के टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले फीफा की असली जूल्स रिमेट ट्रॉफी एक एग्जीबिशन से चोरी हो जाती है। पूरी लंदन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड सब फेल हो गए। लेकिन जानते हैं इसे किसने ढूंढा? किसी पुलिस वाले ने नहीं, बल्कि पिकल्स नाम के एक पालतू डॉगी ने। उसने झाड़ियों के पीछे अखबार में लिपटी हुई इस सोने की ट्रॉफी को सूंघकर निकाला था। और उसके बाद में जैसे 1983 में रियो डी जेनेरियो में भी फिर से ये चोरी हो गई थी और इसे कभी बरामद नहीं किया गया। कहा जाता है कि चोरों ने इसे पिघला दिया था शायद।
0: बिल्कुल, और ब्राज़ील दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने आज तक के सभी विश्व फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में भाग लिया है और सबसे ज़्यादा यानी 5 बार विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। और सबसे युवा गोलकीपर की अगर हम बात करें तो वो थे पेले, जिन्होंने वर्ष 1958 में मात्र 17 वर्ष की आयु में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसी तरह सबसे उम्रदराज गोलकीपर की अगर हम बात करें तो मिस्र के एसाम एल हदारी ने वर्ष 2018 में 45 वर्ष की आयु में ये मैच खेला था।
1: और आजकल 2006 में अंग्रेजी रेफरी ग्राहम पॉल ने क्रोएशिया के जोसेफ शिमुनिक को एक ही मैच में 3 पीले कार्ड दिए। ये एक विचित्र गलती मानी गई और जिसके बाद उन्हें अंततः मैदान से बाहर भेज दिया गया। अवार्ड्स की अगर बात करते हैं तो फीफा में सिर्फ ट्रॉफी नहीं मिलती, यहाँ गोल्डन बूट उसको मिलता है जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, गोल्डन बॉल भी मिलती है बेस्ट प्लेयर को और गोल्डन ग्लव्स मिलते हैं बेस्ट गोल कीपर को। कितने गलत अवार्ड्स हैं ना ये।
0: बिल्कुल, और एक मैच में सबसे ज़्यादा यानी 10 गोल का रिकॉर्ड करने वाली टीम है हंगरी नेशन फुटबॉल टीम, जिन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ष 1954 में अपने नाम किया था। वर्ष 2010 की मेजबानी साउथ अफ्रीका ने की और वर्ष 2018 की वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था जिसे फ्रांस ने जीता। और आखिरी विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित हुआ था, यह मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था जिसमें अर्जेंटीना विजेता टीम रही और उपविजेता फ्रांस। यह मैच इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल्स में एक माना जाता है।
1: और यही मैच जिसे आप कह रही हैं कतर में हुआ 2022 में फाइनल में, तो इसे लगभग 1.5 अरब दर्शकों ने देखा था, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल कह सकते हैं इसे। और जैसे कि इस बार भी नए नए से रोमांचक मुकाबले ही नहीं होंगे बल्कि खिलाड़ियों के साथ भी उन्हें देखना भी कोई एक खास एहसास से कम नहीं होगा। क्योंकि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनकी उम्र 41 साल हो गई है और लियोनेल मेसी जो 38 साल के हैं अपने करियर का 6ठा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक खास इमोशन जुड़ा होगा इस मैच से जुड़ा हुआ। और उसके अलावा जो मैच होगा ओपनिंग मैच होगा मेक्सिको सिटी के मशहूर एग्जेटिका स्टेडियम में होने वाले इस

0: एक्साइटेड है। इवन इंडिया में चाहे टीम नहीं खेल रही, लेकिन सारे फैंस जो फुटबॉल फैंस हैं वो एक्साइटेड हैं कि हमें ये मैच देखने हैं, जबकि ये मैच देर रात को प्रसारित होंगे, अर्ली मॉर्निंग में प्रसारित होने वाले हैं। लेकिन मैचों को लेकर भी कुछ कंडक्ट रूल ऑफ कंडक्ट चेंज किए गए हैं कि इसमें सभी स्टेडियम्स में दर्शकों को रीयूजेबल पानी की बोटल्स ले जाने पर बैन लगा दिया गया है, जबकि फैंस गर्मी को लेकर चिंता जता रहे हैं, पर फीफा ने हाइड्रेशन स्टेशन, कूलिंग टेंट और अन्य सुविधाओं का भरोसा दिया है। तो ये थोड़ी बहुत राहत की खबर हो सकती है। बाकी फुटबॉल का जुनून हर ओर साफ दिखाई दे रहा है, देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या नए उतार चढ़ाव मिलते हैं देखने को।
1: बिल्कुल।

0: स्टाफ खून चढ़ाने से पहले संबंधित डिटेल्स का मिलान करेंगे और इसके अलावा फायर सेफ्टी, डिजास्टर प्लान, मॉक ड्रिल आदि को लेकर भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए हैं जो इसी वक्त से प्रभावी हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं एक बार फिर से आपको याद दिला दें, मिडवीक वाइब्स में आज आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं लिसनर कनेक्ट सेगमेंट में और प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी हमें बता सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
0: चलिए एक और अपडेट भी हम श्रोताओं से साझा करते हैं आंचल की। सरकारी स्कूलों के खिलाड़ी जो राज्य, जिला और क्षेत्रीय स्तर की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं और ट्रेनिंग कैंप में भाग लेते हैं ना, उनके लिए बड़ी एक अच्छी सी खबर है कि उनके खुराक भत्ते को बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है, जो सत्र 2026-27 से पूरी तरह प्रभावी हो रहा है। और इसके अलावा जो बाकी खेलकूद से जुड़े नियम हैं वो तो पहले वाले ही रहेंगे।
1: और ज्योति, अब घड़ी की ओर देखें तो समय हो चला हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो चलते हमारे जयपुर अजमेर केंद्र की ओर और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
0: जल्द लौटते हैं, बनी रही है हमारे साथ।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री

0: केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। सवाई माधोपुर के रहने वाले जयदीप सिंह राजावत ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को उपयोगी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम जयदीप सिंह राजावत है। मैंने सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगवाया था, जिसमें मैंने मेरा जो राशि थी वो 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से मुझे 78,000 रुपये सब्सिडी के द्वारा किए गए केंद्र सरकार के, और इस स्कीम से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। मुझे अभी तक एक भी बिल का राशि देने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं इस स्कीम के लिए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और ये आगे निरंतर बनी रहे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
2: समय रहते हुए इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है, उसमें ये ध्यान में आया, और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हिस्सा लेंगी। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
3: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों

0: पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत कार्यक्रम में इस गीत के साथ।
2: खुद को कर बुलंद इतना

0: सुन रहे हैं नमस्कार उदयपुर। वक्त है उस सेगमेंट का जो हर सुबह हमारे इरादों को फौलाद बना देता है, यह इंस्पिरेशन जोन। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हम एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने पुरुषों के दबदबे वाले डिफेंस सेक्टर में वो धमाका किया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई।
1: बिल्कुल, भारत के विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं में से एक है भारत की मिसाइल वुमन टेसी थॉमस, जिनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। टेसी थॉमस का जन्म वर्ष 1963 में केरल के अलप्पुंजा में हुआ था। बचपन से ही इन्हें विज्ञान और तकनीकी में गहरी रुचि थी। इन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी करने के बाद मिसाइल तकनीक में विशेषज्ञता हासिल की और बाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गई।
0: और जानते हैं आंचल, उनके

0: नाम आजाद, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और
1: हम्म,
0: उन्हें देश के सबसे संवेदनशील प्रोजेक्ट अग्नि मिसाइल टीम में शामिल किया।
1: बिल्कुल। टेसी थॉमस ने भारत के प्रसिद्ध अग्नि मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी उन्नत मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। वर्ष 2009 में अग्नि 4 मिसाइल परियोजना की ये परियोजना निदेशक बनी, जो किसी भी महिला के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
0: बिल्कुल, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था हाल ही में कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपकी मेहनत बोलती है। वो आज DRDO के सर्वोच्च पदों से रिटायर होकर अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं, और जब जब भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बात होगी, डॉक्टर टेसी थॉमस का नाम सुनहरे अक्षरों में। भारत की इस अग्नि पुत्री को तो उदयपुर, कैसी लगी हमारी आज की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी डॉक्टर टेसी थॉमस की? उनकी जर्नी ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत होना तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। उठाइए अपना फोन, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजकर बताइए कि आपकी लाइफ का कौन सा वो मिशन है जिसे पूरा करने के लिए आज आपको डॉक्टर टेसी थॉमस की कहानी से इंस्पिरेशन मिलती है। अपने मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर 9462697568।

0: ज्योति श्रोता संवाद में हमारे साथ जुड़ी है हमारी डेली की श्रोता किरण कुमावत। खमागनी करते हुए हमारे साथ बोलती है, मैं टेकरी लिंक रोड किरण कुमावत, नमस्कार। उदयपुर प्रोग्राम हमें अच्छा लगता है और इससे आप जो भी जानकारी हमें देते हैं बहुत अच्छी लगती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ आज होने जा रहा है। हमारे बच्चे लियोनेल मेसी जी को अर्जेंटीना से खेलते और क्रिस्टिलो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से खेलते हैं उनके लिए बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और मैडम जी, इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है। साथ ही आप जो भी सिटी अपडेट देती हैं इन्हें बहुत अच्छी लगती है।
1: बिल्कुल, हमारे इनबॉक्स में कुछ और मैसेजेस भी हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस जो आए हैं उनमें से ये है, कृतिका भोपालपुरा से कहती हैं कि आप जो बात बता रही थी अभी डॉक्टर टेसी थॉमस की, तो इनसे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली और एक बार तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लोग सोचते हैं कि साइंस और रिसर्च लड़कियों के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि साइंस में कोई जेंडर नहीं होता, तो मुझे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग ही बूस्ट मिल गया है। तो शुक्रिया करते हैं कृतिका, आपने हमें मैसेज भेजा। और ये मैसेज हमें मिला है विक्रम का, लिखते हैं कि उन्हें प्रोग्राम अच्छा लगा, हम आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं।

0: बेशक सुकून मिलता है ना आजकल जब श्रोता अपने दिल की बातें हमसे साझा करते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, तो खुशी की बात है कि एक मैसेज है सुशील यादव, रेनू यादव जी का। इन्होंने कल के प्रोग्राम के बारे में लिखा है कि 9 जून को कार पुलिंग यानी धन और ईंधन की बचत की जागरूकता के बारे में जो जानकारी दी गई इन्हें अच्छी लगी और इसी क्रम में वर्क फ्रॉम होम पर चर्चा भी समय की मांग के अनुसार उपयोगी लगी। बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम सुना और हमें रिप्लाई भी किया।
1: इसी के साथ कमल सुहालका जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि हम सभी रोज़ सुबह आपका प्रोग्राम सुनते हैं, काफ़ी समय से फरमाइशी कार्यक्रम की भी ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये

हमारी अधिकारियों को हम इसकी जानकारी देंगे। साथ ही फुटबॉल मैच के बारे में इनको जानकारी अच्छी लगी और प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री काल के 15 साल पूरे करने की ये शुभकामनाएं भी हमें पहुंचा रहे हैं।

0: देवताओं के मैसेज, उनकी बातें पढ़ना बेहद खूबसूरत लगता है ना आंचल। तो फिर चलिए कमल सुहालका जी का जो इतना लंबा सा मैसेज है उसे भी हम श्रोताओं के साथ फिर से और बातें जो उन्होंने लिखी है, जैसे हमने पूछा था कि कोई विदेशी पर्यटक मिले आपसे या आप किन से मिलना चाहेंगे, उनसे बातें करना चाहेंगे, तो इन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ी भाषा वो ज़रूर शायद सीखना चाहते हैं, यही लिखेंगे लिख रहे हैं, आधी बात लिखी है इन्होंने, और कह रहे हैं कि भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत की संस्कृति इन्हें बेहद पसंद है। जगदीश चौक मंदिर और फतेह सागर के आसपास देशी विदेशी परिवेश से ओतप्रोत कई पुरुष और युवा मन की बात कहते हैं, उनका पहनावा भी अब अपनी पहचान बना रहा है, और लिख रहे हैं कि हम रोज़ सुनते हैं ये प्रोग्राम, गाने इन्हें अच्छे लग रहे हैं, और लिख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हम मेजर ध्यानचंद को याद कर रहे हैं, प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है। साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि कई सारे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है इनके साथ जो श्रोताओं के नाम साझा करते हैं, वो हैं परमानंद जी कुमावत, श्याम जी मटपाल, डिम्पी सुहालका और बालकृष्ण जी सुहालका हैं। आप सभी ने मिलकर ये जो हमें संदेश लिखा है आपका बहुत शुक्रिया करते हैं, और देखने वाली बात है कि फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो, मेसी या फिर कोई और इनके ट्रॉफी को उठाएगा। चलिए और इसी के साथ प्रोग्राम को समापन की ओर ले चलते हैं।
1: बिल्कुल, वक्त हो चला है कार्यक्रम से इजाजत लेने का। तो आज कार्यक्रम में मैं थी आपकी रेडियो दोस्त आंचल और मेरे साथ थी
0: ज्योति।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

मॉर्निंग लेक सिटी, ये है आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर मॉर्निंग शो की शुरुआत कर रहे हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी, और एक छोटी सी कहानी भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। एक बार एक नेत्रहीन लड़का पार्क की बेंच पर बैठा था, पास ही एक आदमी भी बैठा था। अचानक वो धीरे धीरे हंसने लगा। लड़के ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या मज़ेदार बात है? आदमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जिसकी तरफ पहले उसका ध्यान नहीं था। कहा, माफ़ करना। लड़के ने कहा, तुम हंस रहे थे। हाँ, आदमी ने कहा, कुछ ऐसा है जो मैंने इस किताब में पढ़ा, उसने लड़के की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने पूछा, वो क्या था? एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी तरफ लंगड़ाते हुए आते हुए देख रहा है और पूछता है कि तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? लंगड़ाता हुआ आदमी कहता है, क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। अब वे मिलकर दोनों हंसने लगे। लड़के ने कहा, जब तुम पढ़ लो तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? आदमी ने उदासी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या, किताब? लड़के ने कहा, नहीं, आँखें। एक बार जब तुम्हारी आँखें देख लें तो उन्हें आगे बढ़ा देना, हमेशा कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ कहानियाँ आपके साथ नहीं रहती, बल्कि ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया बदल देती हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम एक पल से कहीं आगे तक जा सकता है और उतनी बड़ी चीज़ बन सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये बात नहीं है कि हम क्या देते हैं, बल्कि यह है कि इसका किसी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है। एक बात याद दिलाने वाली है कि हमारे जाने के बाद भी हम किसी के लिए दुनिया को दोबारा देखने की वजह बन सकते हैं। बस सोच के देखिए।

और बात करते हैं सबसे पहले ये शहर के मिजाज की। तो राजस्थान में धूप का कहर हो सकता है, पर उदयपुर में मौसम थोड़ा सा मेहरबान है। कुछ हवाएं चल रही हैं और आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने वाला है। शाम को बादल छाने की गुंजाइश भी है, शायद थोड़ी सी ठंडी फुहार भी मिल सकती है। पर अगर आप घर से चल रहे हैं तो जो चेतक सर्कल से कोट चौराहा वाले रूट पर थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक है सुबह के कारण, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स होते हैं और ऑब्वियसली इस वक्त थोड़ा सा रश रहता है। और अगर आप निकल रहे हैं जहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है उस रूट से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समय और लेकर चलना है, क्योंकि वन वे है तो वहाँ से, और सिंगल लेन किया जाता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे कर करके चलती हैं, तो कुछ समय एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। वैसे दिल्ली गेट और सूरजपोल तो बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, लेकिन बारिशों का इंतज़ार ज़रूर हम सब कर रहे हैं ना। तो केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है, तेज़ रफ्तार से वो देश के 16 राज्यों तक पहुँच भी चुका है। प्री मानसून शावर उदयपुर के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है 11 जून से। उससे पहले उमस और लू से परेशान ना होइएगा, बस संभल कर चलिए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बुधवार सुबह 10 बजे 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर प्रोग्राम भूली हुई यादें, और यादों में कोई एक साल, उस साल की फिल्में, उस साल की फिल्मों के गाने, थोड़ी थोड़ी

0: बातें और बहुत कुछ। जरूर सुनिए बुधवार सुबह 10 बजे प्रोग्राम भूली हुई यादें, ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।
1: आप सुन रहे हैं शहर का लोकप्रिय रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 FM बैंड पर। मॉर्निंग शो चल रहा है गुड मॉर्निंग लेक सिटी। उदयपुर हमारे शहर में बन रहा है फ्लाईओवर। यूं तो शहर की हर गली, हर पुरानी दीवार, हर ऐतिहासिक इमारत के पास सुनाने के लिए अपनी एक कहानी है। हमारी विरासत हमारी पहचान है, पर कुछ चीज़ें अब बदलने लगी हैं। शहर के रास्ते भी बदलने लगे हैं और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि शहर के बढ़ते ट्रैफिक को थामने और हमारे सफ़र को आसान बनाने के लिए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं शहर में। तो इन विकास के चलते कई सारी पुरानी विरासत को के कुछ हिस्सों को अलविदा कहना होता है, जिनसे हमारी यादें जुड़ी होती हैं। कह सकते हैं उदयपुर चौराहे का स्वरूप बदल रहा है, सूरजपोल चौराहे का स्वरूप अब बदल रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर के चलते वहाँ पर वो रूट शामिल होगा, तो वहाँ पे अब सब बदलाव हो जाएगा। ये यादें हमारी जहन में बसी हैं, ये शहर का हमारा सूरजपोल चौराहा, हमारा उदयपुर। पर ये भी कह सकते हैं कि कई परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि कभी कोई एम्बुलेंस को निकलना होता है, किसी भूखे बैठे बच्चे को स्कूल, जो स्कूल बस में बैठा है, जल्दी से गुजरना है, या फिर कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, या कई तरह की बातें होती है, लंबा ट्रैफिक जाम होता है, इन सब से निकलना ज़रूरी होता है। तो विकास भी ज़रूरी है। तो ऐसे में सीमेंट और लोहे के ढांचे नहीं, बल्कि हमारे शहर के लिए तेज़ भविष्य का रास्ता बनाती ये बदलाव। विरासत सिर्फ पत्थरों में नहीं होती, हमारे दिलों में, हमारे यादों में हमेशा बसी रहती है। यही सोचकर हम अपने शहर के विकास को और आंखें लगाए बैठे रहेंगे कि हमारा शहर कितनी तरक्की करता है, पर हाँ, अपने यादों से, अपने जहन से उन चीज़ों को हम निकाल नहीं पाएंगे। सच है ना?

रेडियो लेक सिटी उदयपुर। अब हम याद करेंगे एक ऐसे कलाकार को जिनकी सादगी अभिनय को एक नया पैमाना दे देती है। उदयपुर कला की दुनिया में कुछ ऐसे लोग आते हैं ना, जो सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि इतिहास लिखते हैं। वो कागज़ पर अल्फाज उतारते हैं तो नाटक अमर हो जाते हैं और कैमरे के सामने उनकी सादगी दर्शकों को रोमांचित कर देती है। भारतीय सिनेमा, थिएटर और साहित्य के चमकता सितारा जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हर दिल पर राज किया, लीजेंड गिरीश कर्नाड जी, आज उनकी पुण्यतिथि है।

उदयपुर, जब भी हम पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं तो हीरो हीरोइन के साथ एक ऐसा चेहरा जहन में आता है जिनके बिना वो फिल्म अधूरी लगती है। एक ऐसा विलन जिसने जब भी स्क्रीन पर एंट्री ली तो अपनी तिरछी नज़रों, अनोखे डायलॉग डिलीवरी स्टाइल और एक हाथ को हवा में लहराते हुए दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते और आइकॉनिक खलनायक ओमकार नाथ धर की, जिन्हें पूरी दुनिया जीवन के नाम से जानती है। आज उनकी पुण्यतिथि है। बॉलीवुड के सदाबहार नारद मुनि और खलनायक विलन को आज हम याद कर रहे हैं।

भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो चुके ये कलाकार, उन्हें हम उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं, नमन करते हैं। गुड मॉर्निंग लेक सिटी सेगमेंट पूरा होता है।

0: है ता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओ लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बुधवार सुबह 10 बजे 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर प्रोग्राम भूली हुई यादें, और यादों में कोई एक साल, उस साल की फिल्में, उस साल की फिल्मों के गाने, थोड़ी थोड़ी बातें और बहुत कुछ। जरूर सुनिए बुधवार सुबह 10 बजे प्रोग्राम भूली हुई यादें, ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

सुन रहे हैं आप रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम समेट कर लाए हैं यादों के कुछ बिखरे पन्ने। वक्त है प्रोग्राम भूली हुई यादों का। बदले मिजाज के इस नए दौर में ठहराव का कुछ वक्त ढूंढ लाए हैं। छोड़कर भाग दौड़ आज इस ज़माने की, एक गुजरा हुआ मकाम ढूंढ लाए हैं। तारीखें बदल गईं, साल गुजर गए, मगर जो धड़कनों में महफूज है उन गुजरे हुए लम्हों के हसीन पैगाम ढूंढ लाए हैं। बातें साल 1983 की फिल्मों की।

एक अमीर लड़के और अमीर लड़की और साधारण लड़के के बीच की प्रेम कहानी, पारिवारिक संघर्ष है साथ में। ये फिल्म आई 1980 के दशक में, फिल्म बेताब।

बेताब को धर्मेंद्र ने अपने बैनर विजेता फिल्म्स के तहत बनाया था। संगीत दिया आरडी बर्मन ने और इसके गाने सदाबहार आज भी सुने जाते हैं और बेहद पसंद किए जाते हैं।

पीते हुए लम्हों की खुशबू, गुजरे हुए कल के नगमे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूली हुई यादें में। रेडियो लेक सिटी है ये आपका मनपसंद चैनल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। 1983 में शेखर कपूर के डायरेक्शन में एक फिल्म आई थी मासूम, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और छोटे से जुगल हंसराज की फिल्म।

रिश्तों की इतनी खूबसूरती और उलझी हुई दास्तान शायद ही दोबारा कभी बनी हो। फिल्म का एक गाना जिसे हम आज भी गुनगुनाते हैं, पर क्या जानते हैं आप कि इस गाने को लिखने वाले महान शायर और गीतकार गुलजार साहब और कंपोजर आर डी बर्मन के बीच इस गाने की ट्यून को लेकर बड़ी बहस हो गई थी। गाना था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। पंचम दा ने जो पहले धुन बनाई गुलजार साहब को पसंद नहीं आई। पंचम दा ने इसके बाद आधे घंटे में एक और नई धुन तैयार कर दी और जब उन्होंने ये धुन गुलजार को सुनाई उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही धुन आज अमर है।

शेखर कपूर की डायरेक्शन वाली पहली हिंदी फिल्म मासूम। इस फिल्म का गाना लकड़ी की काठी आज भी हर बच्चे की ज़ुबान पर अक्सर सुनाई देता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को किसी प्रोफेशनल सिंगर ने नहीं बल्कि उस समय के मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन ने गुलजार साहब के घर पर बच्चों के खेलते हुए शोर से इंस्पायर होकर कंपोज किया था और इसे कुछ बच्चों के साथ कलाकारों ने गाया है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़ी गई,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: ये है रेडियो लेक सिटी 101.9 FM बैंड पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूली हुई यादें और आज हम बात कर रहे हैं साल 1983 में रिलीज हिंदी फिल्मों की और सुन रहे हैं उन्हीं फिल्मों के गाने। साल 1983 सिर्फ कैलेंडर का एक साल ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो पन्ना था जिसने हमें वो कहानियाँ दी, वो गीत दिए जो आज भी हमारे दिलों में तरोताज़ा हैं।

रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म हीरो आई थी साल 1983 में, जिसे बनाया सुभाष घई ने। स्टैब्लिश एक्टर्स को लेने की बजाय उन्होंने नवोदित कलाकारों के साथ ये प्रयोग किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुआ।

सबने DDLJ फिल्म तो देखी ही है, जिसमें राज ने सिमरन के साथ भागने से इनकार कर दिया था और उनका ये रूप लोगों को खूब लुभाया था। लेकिन आप जान लीजिए कि ऐसा करने वाले वो पहले हीरो नहीं थे। जैकी ने भी एक पीढ़ी पहले यानी 1983 में इस फिल्म में हीरो में अपनी राधा के लिए ऐसा ही किया था। जहाँ शाहरुख ने लंदन के लड़के राज के रूप में अपने प्यार के लिए महाद्वीप को पार किया था, तो जैकी ने एक कदम आगे बढ़कर दिखाया। उन्होंने कानून के गलत पक्ष में रहने वाले एक गुंडे से बदलकर एक मेहनती और ईमानदार नागरिक के रूप में खुद को सुधारा और अपने जीवन की कहानी फिर से लिखी।

साल 1983 में फिल्म हीरो अमिताभ बच्चन के उस दौर में निर्देशक सुभाष घई की एक तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री जो इसके मुख्य कलाकार थे, उनकी पवित्रता, मासूमियत और आपसी तालमेल ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

0: समझाए भी ना समझे है जिसे लगे इश्क की लत। सुन रहे हैं आप रेडियो लिक सिटी।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जी ओम प्रकाश की आदत थी कि वे अपनी सभी फिल्मों का नाम अ अक्षर से शुरू करते थे और इसी श्रृंखला का ये नाम अर्पण। और इस फिल्म में त्याग, प्रेम, विश्वासघात की कहानी है कि नायक एक धोखे के बाद सब कुछ खो देता है पर अपनी मेहनत से वो सब कुछ वो फिर से हासिल करता है।
1: देखिए, हमारा 5-स्टार होटल है, यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने चाय?
2: जी नहीं, शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती।

यादों का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक पड़ाव है। चलिए आज के इस प्रोग्राम से विदा लेंगे और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ और गानों के साथ 1983 की फिल्मों के साथ में। किताबें माजी के पन्ने जब भी पलटते हैं हम, वक्त के बहते दरिया में थोड़ा ठहरते हैं हम। यादें चाहे भूली हुई हों या गुजरा हुआ कोई फसाना हो, उन गुजरे दिनों की महक से ही आज संवरते हैं हम।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है।

0: के 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। सुबह के 11 बज चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत का। उदयपुर, कभी सोच कर देखिए कि अगर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें तो पूरी दुनिया कितनी खामोश और अंधेरी लगने लगती है।

सुबह की चमक, ये धूप, पिछोला की लहरें, अपनों के मुस्कराते चेहरे, कई लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन लोगों के लिए ये अंधेरा सिर्फ 2 मिनट का नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का होता है। आज 10 जून पूरी दुनिया मना रही है आई डोनेशन डे।

देश में कार्नियल अंधत्व से पीड़ित रोगियों की संख्या बहुत अधिक है, जिनमें कई यूथ शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं जिनका जीवन बुरी तरह प्रभावित है। हालांकि हमारे विशेषज्ञ नेत्र शल्य चिकित्सकों के पास इन प्रत्यारोपणों को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्नत कौशल मौजूद है, तकनीक मौजूद है, पर फिर भी देश भर में नेत्रदान की भारी कमी है। इसी के कारण हजारों आशावान रोगी वर्षों तक एक प्रतीक्षा सूची में फंसे रहते हैं। इस संकट को हमें हल करना होगा, हमें इस प्रक्रिया के बारे में जानना होगा, उनकी मदद करनी होगी। और कई सारी भ्रांतियां हम लेकर बैठे होते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है या नहीं कर सकते, इसके बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर ये भी जानना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के भीतर चिकित्सा दल द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से आँखें एकत्र की जाती हैं, जिससे परिवार को तुरंत सूचित करना ज़रूरी हो जाता है। एक बार प्राप्त होने के बाद एकत्रित कॉर्नियल उत्तक को तुरंत विशेष नेत्र बैंकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसे एक लिमिट होती है उस तापमान नियंत्रण के तहत रखा जाता है वैज्ञानिक समाधानों के अनुसार। और उसके बाद डॉक्टर प्राप्तकर्ता की प्रत्यारोपण सर्जरी निर्धारित करते हैं, लेकिन उससे पहले पूरे परीक्षण किए जाते हैं कि ये नेत्र भी स्वस्थ है, रोगाणु रहित है और सुरक्षित है। किसी की आँखों को रोशन करना एक बेहद सुकून देने वाली खुशी है।

किसी को रोशनी का अनमोल तोहफा दे जाना कैसी कैसी जिंदगी होती होगी सोचिए। चलिए आज नेत्रदान दिवस है, कुछ भ्रांतियों को भी दूर कर लिया जाए। कई लोग जो सोचते हैं कि हमारी आयु इतनी है, या तो बहुत छोटे हैं या बड़े हैं, तो हम नहीं दान कर सकते। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी उम्र के लोग अपनी आंखें दान कर सकते हैं। इसके अलावा मधुमेह या उच्च रक्तचाप हाई बीपी वाली बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति और चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके लोग भी पूरी तरह पात्र हैं। और आँख निकलने की प्रक्रिया एक त्वरित शल्य चिकित्सा है जिसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और बहुत सटीकता के साथ की जाती है। इससे चेहरे पर कोई विकृति नहीं आती, जिससे परिवार बिना किसी देरी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट संक्रामक बीमारियों जैसे कि रेबीज, टिटनस, HIV, हेपेटाइटिस बी सी या कुछ तरह के रक्त कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की ही चिकित्सकीय रूप से उत्तक दान करने से मना किया जाता है। इसके अलावा अन्य लोग पात्र हैं और इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।

हमारे जाने के बाद भी आंखें अमर रहती हैं, क्या कोई नेत्रदान करना चाहेगा? तो हमारे देश में इसके लिए आवश्यक होता है परिवार की सहमति लेना। इसलिए ज़रूरी है कि अपने निर्णय के बारे में आप परिवार के सदस्यों से चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि वो आपकी इच्छाओं से अवगत हैं, और इसके बाद किसी मान्यता प्राप्त नेत्र बैंक, अस्पताल या आधिकारिक नेत्रदान कार्यक्रम के

निदा फाजली ने लिखा था, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए और हम साथ में जोड़ दें किसी अंधेरी आंखों में उजाला ला।

जाए। एक किस्सा कहीं पे पढ़ा था कि एक माँ ने अपने जवान बेटे को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और उस बेहद मुश्किल घड़ी में भी माँ ने हिम्मत दिखाई और अपने बेटे की आंखें दान करने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद माँ की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हुई जिसे उनके बेटे की कानिया मिली हुई थी, आंखें दी गई थी। जब माँ ने उस बच्ची की आंखों को देखा तो उनके आंसू छलक पड़े। बोली कि मेरा बेटा गया नहीं है, इस बच्ची की आंखों से आज भी दुनिया को देख रहा है।

0: कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम अब पूरा होता है।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 FM रेडियो लेक्स सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक्स सिटी पर।

आज री भागदौड़ भरी जिंदगी में यो मेवाड़ी गीत यो फोक गीता रो जो मजो आवे वंडी कई बात है। चलो तब आपने हुनावा हाँ चौमासे रो एक चोखो गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रेडियो लेक सिटी पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम कोखड़ा। इसी के साथ आज की मॉर्निंग लोकल विंडो के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25

0: 20 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेन्द्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आइए विविध भारती मुंबई से सुनते हैं यादों की महफिल। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 FM रेडियो लेक्स सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक्स सिटी पर।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने। देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना, सुरेश वाडकर की आवाज में इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर. मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत.

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा

0: है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि

कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या हैं। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कन ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए हैं, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो, तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है, तो चलोगी ना? मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत हैं उनमें एक और ख़ास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली।

0: जय। हाँ बोलो हनुमान की जय। जय हो बजरंग बली की जय।
1: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं चुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज़ है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाज़ें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए, कुछ जो टिप्पणियाँ आई हैं हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां करते ही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहाँ आँखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज़्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल, सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी ज़रूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार इकरार तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए ज़रूरी हैं जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी और तुमसे?
1: शादी का इरादा है।
0: ना, शादी हा? ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत।
6: सुनिए
7: कहिए कहिए,
6: सुनिए सुनिए
7: कहिए कहिए।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके ज़माने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं ज़िंदगी के नए सफ़र में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा ज़रूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ़्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ़्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ़्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो। जब आप रिफ़्रेश करेंगे उसके बाद भी, जब आपको सुरीला सफ़र की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए, तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार ज़रूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत, फिल्म हम से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सुनने का मौका जरूर मिला है, बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था, जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है, उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है, जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूम

0: मैं।
1: हाँ तुम।
0: बस तुम।
1: ओफो।
2: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोकझोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए, आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है

तो उसे ठीक करवाइए। पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं। भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझे, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल

ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा कर रहे समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने

0: वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है।

0: तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर

0: अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जवलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती हैं, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है।
0: हाँ।
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।

0: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
1: विषय बता दे।
0: बिल्कुल
1: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है। ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बताते बनाते हैं, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट्स कर कर करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको तो अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है।
0: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
1: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजारों।
0: हजार होते
1: पुराना जमाना याद
0: हैं।
1: कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
0: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
1: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना।
0: समझ रही हूं मैं आपके आपका इशारा किस और
1: जी,
0: है।
1: शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है।
0: और किस तरह का संवाद होता है।
1: है ना। हाँ
0: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार।
1: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है ना, और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
0: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
1: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो
0: जी
1: बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आँखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आँखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है। तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो
1: जी
0: सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ
1: जी
0: ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें,
0: जी अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत
1: सुनते हैं
0: बातें हो
1: गीत।
0: गई
1: जी सुनते हैं गीत।
0: हैं। ठीक।

0: तो नेहा, मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और

0: अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
1: नहीं हो पाई
0: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है। मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए, आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी, ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सकें।
0: सके
1: और जब भी
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और साड़ी में
0: साड़ियां
1: जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं

0: महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार, जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है, तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं, जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरीयुक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी
0: ओहो क्या बात है,
1: साड़ियां
0: क्या
1: हैं। मुझे
0: बात है।
1: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। और कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारे दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा। कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ

0: को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था, यानी हम जब तक ना बोलेंगे अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं, सुना लीजिए।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहाकर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए।
1: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं इधर, हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
0: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो घर
1: चाहिए।
0: की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ।
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया।
0: संवाद को।
1: हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है
0: जी
1: सोनाली जी। सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत यह है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं, इसलिए ऐसी।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी। क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं, जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे।
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा
0: चलेगा।
1: कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये
0: दो
1: तो
0: सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेगा वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर

0: नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है? छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए, बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहिणियों को
1: ओहो।
0: बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते हैं कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले
1: हाँ,
0: हैं।
1: सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को, कि बच्चों को, कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे। आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे, तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है, रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथी लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या
1: ये
0: फिर
1: कर लो।
0: खाना तैयार है कि नहीं,
1: नहीं,
0: हम आए क्या
1: हाँ।
0: डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से। यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो गृहणिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है कि हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना।
0: चाहिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काटकर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे, मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले, अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले, अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जी।

0: ज़रूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्ज़ी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च लहसुन हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं, और आप क्या करें।
1: गीत सुने
0: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में। तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता है। अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से, और विविध भारती से रिश्ता है ही।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग

0: फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी,
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता
1: क्या
0: था।
1: बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था, तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो
1: हाँ,
0: तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे,
1: गजब।
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे,
1: हाँ,
0: बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो
1: जी।
0: या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाएं, कुछ भी कर पाएं, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया। और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है,
1: जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है,
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूं, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था,
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
1: जी।
0: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था,
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर
1: संबंध नहीं
0: दूर से
1: होता है।
0: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
1: जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान,
1: जी।
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा
1: हाँ।
0: तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी,
1: सर्वेश्वर जी के
0: और हाँ
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने
1: लिख
0: सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई, तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी, तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित, उन्होंने

0: कहा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता। लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में तुम पढ़ते थे, और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात
0: तुम
1: है।
0: इलाहाबाद में हो, मैं
1: हाँ
0: वहां रहा हूं,
1: हाँ
0: तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो
1: कि
0: वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और
1: हाँ
0: कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी। तो
1: क्या
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी
1: बात
0: बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा, चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: के
0: प्रस्तुति थी।
1: प्रस्तुति
0: तो मुझसे कह रहे हैं, तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला, ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला, अच्छा, चोरी मत करना, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले, अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा, नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
0: चलेगी।
1: सोच।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हों, और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी, जैसे आपने कहा, यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
1: जी,
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं। और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज

0: रुपए गए और एक वृक्ष की।
1: 3 लाइनों में बात कहता हूं कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं। पहली
0: अच्छा
1: नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। और शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये 2 आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मेहनतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक ओर
1: हाँ,
0: दे
1: जो
0: पर रहे।
1: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10 15, 10 15, 10 15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी।
0: जी
1: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रूमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह वाली कविता एक
0: दो लाइन
1: एक
0: सुनाइए।
1: कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूं, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी,
0: जी
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं एक चिट्ठी लाया हूं, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का
0: बिल्कुल
1: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
0: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
0: जी जी
1: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई।

0: तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूँगा तब मैंने
1: जी
0: वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है,
1: जी आप अगर सुनाए हमारे श्रोताओं को
0: हाँ,
1: तो 4 लाइन।
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है,
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है,
1: ओ गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं।

0: गजब।
1: घर में पैसे चार नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
0: क्या बात है, वाह।
1: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
0: शेष कुशल है, क्या बात है।
1: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
0: वाह।
1: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
0: शेष कुशल है, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
1: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह,
0: सुनते हैं यही गाना।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग्य नहीं
0: अनकहा
1: उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ कहता।
1: अनकहा।
0: हाँ,
1: तो एक
0: सही।
1: अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वाली आसी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने
0: जी
1: पाया हमने खोया। अब
0: जी
1: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब ये जो खूबसूरती थी, इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी
1: तो हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। गागर में सागर
1: कैसे कह देगा कोई
0: को,
1: किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
0: जी
1: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
0: जी
1: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
1: हाँ
0: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके
1: जी,
0: बारे में बताइए, इसकी
1: देखिए
0: क्या
1: नाटक
0: कहानी
1: क्या
0: है।
1: था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो,
0: जनसत्ता के संपादक थे उस
1: हाँ, तो
0: समय।
1: मैं
0: जी
1: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूं। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं, मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का

0: हम बात करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उसकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े
1: जी,
0: छोटे लोग थे,
1: जी,
0: एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा
0: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी, जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो, सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
1: जी,
0: कि नाटक संयोग से, दुर्योग से, जैसे भी था, वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी,
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक ये
1: मराठी में भी
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और तो, कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है, थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है, और इसमें कुलदीप सिंह की मौसिकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी, क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और

0: तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई। तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक
1: जी
0: कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
1: जी
0: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
1: क्या बात है, वाह।
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह
0: एक लड़की
1: वाह
0: आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
1: वाह।
0: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है। तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं
1: जी
0: आपको
1: जी
0: मिलेंगे,
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: न्यूज़ के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज़ रूम में बिताए हैं। तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई। तो 20 कविताएं इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओ
0: एक माँ,
1: ओ
0: एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं,
1: हाँ
0: पान खाएं सैया हमार, वो बजाइए।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है,
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है,
1: तो आप उसको
0: वाह।
1: ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहें तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी,
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं हम, दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है
1: हाँ,
0: जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से

0: ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके, किसी
1: जी
0: के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
1: जी जी
0: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
1: बिल्कुल
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है, तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको
0: नहीं,
1: या
0: उन्होंने
1: यहाँ
0: मना किया। हम तो
1: सकारात्मक
0: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते ही कहते थे कि आओ, घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी
0: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए हैं
0: लगाने आए हैं,
1: जी, बिल्कुल
0: हम कुछ
1: क्या बात
0: बोने
1: है।
0: आए हैं, हम कुछ
1: सृजन
0: सृजन
1: करने
0: करने
1: आए
0: आए
1: हैं
0: हैं।
1: जी।
0: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास, तो
1: नजरिया
0: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे, क्या
0: पहली
1: क्या
0: बार
1: थी सीढ़ी
0: हम
1: आपका?
0: देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा, तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप मैं स्टिंगर हो गया,
1: जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना,
1: जी,
0: उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, मैं
1: इलाहाबाद के।
0: अकेला ही पीर बावर्ची भिस्ती खर था उनके साथ,
1: जी
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
1: क्या
0: न्यूज़
1: बात है।
0: एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो ये टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर हैं कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सकें नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं,
1: जी
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं ये आयोजक के उत्सव होते हैं,
1: जी
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता, वो उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है,
1: जी
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां,
1: जी
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, एक स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
1: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए
0: बिल्कुल,
1: आप
0: बहुत जरूरी,
1: क्या करना चाहते हैं
0: सबसे बड़ी
1: पत्रकारिता
0: चीज
1: का?
0: है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे

0: बरसों में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: कविता माने कविता नहीं रही।
1: जी जी
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो
1: हाँ
0: वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे।
1: जी तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है,
0: बहुत बहुत
1: रचनात्मकता
0: बहुत
1: पर।
0: अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं।
1: जी
0: अब यह है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो
1: जी जी
0: खटमल मच्छर सब आएंगे, ठीक है?
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: आप वो
1: बात है।
0: जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो
1: जी
0: आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर
0: बहुत
1: से।
0: बहुत धन्यवाद ममता
1: नमस्कार।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र FM रेडियो लेक सिटी शाम के 5 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम को आप हमारे दोनों ही चैनल से एक साथ सुन सकते हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर।

0: मंजिलें खुद चलकर नहीं आती, ये सफ़र हमें तय करना पड़ता है। सुबह का उजाला पाने के लिए रात के अंधेरों से लड़ना पड़ता है। हर मोड़ पर मिले इम्तिहानों में खुद को आजमाना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कई तूफानों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके और हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मानसी और मेरे साथ है
1: गीतांजलि।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंगला फोर्ट की, मणिपुर की ऐतिहासिक धरोहर की। एंग्लो मणिपुर वॉर के इतिहास से जुड़ा कंगला फोर्ट भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है और सदियों तक मीति राजाओं की राजधानी तथा शासन का मुख्य केंद्र रहा। कंगला शब्द का अर्थ मीति भाषा में सूखी भूमि या पवित्र भूमि माना जाता है। यह केवल एक किला नहीं बल्कि मणिपुर की संस्कृति, परंपरा, राजनीति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है।
1: जी दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कंगला फोर्ट की स्थापना लगभग 33 AD में राजा नोंगडा लेरेन पखनबा ने की थी। कई सदियों तक यह मीति साम्राज्य की शक्ति का केंद्र बना रहा। यह किला अनेक युद्धों, राजनीतिक संघर्षों और विदेशी आक्रमणों का साक्षी रहा। 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के बाद ब्रिटिश सेना ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद कई हिस्सों को नष्ट भी कर दिया गया। बाद में इसे आसाम राइफल्स के नियंत्रण में रखा गया। साल 2004 में कंगला फोर्ट को आम जनता के लिए दोबारा खोला गया, जिसके बाद यह मणिपुर के गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया।
0: कंगला फोर्ट की वास्तुकला मीति शैली और प्राचीन भारतीय निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। यह किला पहले विशाल दीवारों, गहरी खाइयों और सुरक्षा द्वारों से घिरा हुआ था। किले के अंदर राजमहल के अवशेष, प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल, जलाशय, संग्रहालय, पारंपरिक सभा स्थल आज भी मौजूद हैं।
1: जी दोस्तों, कंगला फोर्ट की सबसे प्रसिद्ध पहचान कंगला शाह स्टैचूज है। ये विशाल ड्रैगन लायन आकृतियाँ शक्ति, सुरक्षा और साहस का प्रतीक भी मानी जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें नष्ट तो कर दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा पुनः निर्माण भी किया गया। आज ये मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: दोस्तों, कंगला फोर्ट केवल एक सैन्य किला नहीं था बल्कि ये धार्मिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ कई पवित्र मंदिर और देवस्थल बनाए गए थे जहाँ राजाओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। मीति समुदाय आज भी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानता है। कई पारंपरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं।
1: जी दोस्तों, अगर इसके हम कुछ रोचक तथ्य की बात करें तो कांगला फोर्ट लगभग 2000 वर्ष पुराने इतिहास से जुड़ा माना जाता है। यह कभी इम्फाल रिवर के दोनों किनारों पर फैला हुआ था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की चर्चा भी हो चुकी है। कंगला फोर्ट मणिपुर की स्वतंत्रता और शाही विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ की प्राचीन दीवारें और स्थापत्य कला उस समय की इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाती है।
0: दोस्तों, आज कांगला फोर्ट मणिपुर का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्राचीन इतिहास, मीति संस्कृति, धार्मिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं। यह स्थान खासकर हिस्ट्री लवर्स, फोटोग्राफर्स और रिसर्चर्स के लिए बेहद आकर्षक माना जाता है।
1: जी दोस्तों, कांगला फोर्ट केवल ईंट और पत्थरों से बना एक किला नहीं बल्कि मणिपुर की आत्मा, संस्कृति और गौरव का भी प्रतीक है। इसकी प्राचीन वास्तुकला, वीरता की कहानियाँ, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक संघर्ष इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स में शामिल करते हैं। सदियों पुराना यह किला आज भी मणिपुर के गौरव और पहचान की दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जी दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डेयरी सेक्टर। तो दोस्तों, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। डेयरी सेक्टर केवल दूध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह एक बड़ा स्टार्टअप और अपन बोल सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है। गांवों से लेकर शहरों तक युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए डेयरी सेक्टर रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहा है। भारत सरकार भी डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे नए स्टार्टअप फाउंडर्स और डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मिल रही है।
3: दोस्तों, भारत में करोड़ों परिवारों की आय का मुख्य स्रोत डेयरी है। खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा साधन बना है। आज दूध, दही, पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स और A2 मिल्क जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी के लिए सरकार की भी कुछ संस्थाएं जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यह भारत की सबसे बड़ी डेयरी विकास संस्था है, जिसे 1965 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों और डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत बनाना है।
2: जी दोस्तों, अगर हम बात करें सरकार की प्रमुख डेयरी योजनाओं के बारे में, तो सबसे पहली आती है इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट NPDD। यह योजना डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत मिल्क चिलिंग प्लांट्स, मिल्क टेस्टिंग लैब्स, कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से जोड़ना और उनकी इनकम को बढ़ाना है। और अगर इसी में हम दूसरी बात करें तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
3: सरकार डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को लोन और सब्सिडी देती है ताकि वे डेयरी फार्म, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, पनीर यूनिट, आइसक्रीम प्लांट, कैटल फीड बिजनेस जैसे स्टार्टअप शुरू कर सकें। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इस योजना का उद्देश्य देसी गायों की नस्ल सुधारना और दूध उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, काउ हेल्थ सर्विसेज, इंडिजीनियस कैटल प्रमोशन पर काम हो रहा है।
2: जी दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF। इस योजना में डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन बिजनेस के लिए करोड़ों तक का लोन भी दिया जाता है। इससे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेयरी यूनिट्स स्थापित भी किए जा सकते हैं। और अगर स्टार्टअप फंडिंग और हम सहायता की बात करें तो आज डेयरी स्टार्टअप्स को कई प्रकार की फंडिंग मिल रही है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और इस योजना के तहत प्रोटोटाइप बनाने के लिए ₹20 लाख तक ग्रांट, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 50 लाख तक की सहायता भी दी जाती है।
3: साथ ही मुद्रा लोन स्कीम भी है, जिसके तहत छोटे डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। जैसे शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन उपलब्ध है। स्टैंडअप इंडिया स्कीम महिलाओं और SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष लोन सुविधा दी जाती है। डेयरी सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, AI आधारित डेयरी सेवा है। अमूल ने सरलाबेन AI शुरू किया है, जो लाखों डेयरी फार्मर्स को पशुओं की देखभाल, वैक्सीनेशन, फीडिंग, ब्रीडिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी देता है।
2: जी दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान में डेयरी विकास की, तो राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। यहाँ सरकार और NDDB मिलकर हजारों गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत बेहतर मिल्क प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपेरेंसी, फार्मर्स इनकम ग्रोथ, सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग पर काम किया जा रहा है।
3: साथ ही दोस्तों, बात करें कि डेयरी स्टार्टअप्स में क्या अवसर है, तो आज युवा इन क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मिल्क हो गया, A2 मिल्क, देसी घी, पनीर मैन्युफैक्चरिंग, आइसक्रीम स्टार्टअप, फ्लेवर्ड मिल्क, डेयरी डिलीवरी एप्स,

0: काउ डंग प्रोडक्ट्स, बायोगैस प्लांट, कैमल मिल्क प्रोडक्ट, क्लाइमेट रेजिस्टेंट डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी काम बढ़ रहा है।
1: जी दोस्तों, अगर हम सोचें कि महिलाओं की क्या भूमिका रहती है, तो भारत की डेयरी अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। गांवों में लाखों महिलाएं दूध उत्पादक, पशुपालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। और अगर इसकी चुनौतियों की बात करें, तो हालांकि डेयरी सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे पशुओं में बीमारी, चारे की कमी, दूध की कीमतों में उतार

0: भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी का महत्वपूर्ण पिलर बन चुका है। गवर्नमेंट स्कीम्स, एआई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप फंडिंग और कॉपरेटिव मॉडल की मदद से भारत का डेयरी सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। यह क्षेत्र युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहा है। आने वाले समय में डेयरी स्टार्टअप भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
1: जी दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डेयरी सेक्टर। अब हम बात करेंगे आपसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। भारत तेजी से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ रहा है। सरकार पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, मेट्रोज, लॉजिस्टिक पार्क्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत भी बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन को तेज, सस्ता और बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पीएम गति शक्ति प्लान की, तो यह योजना 2021 में शुरू की गई थी। इस जिसमें 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया ताकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे हो सके। इस योजना में के जो मुख्य लक्ष्य है वो है फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर लॉजिस्टिक्स, रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस।
0: साथ ही दोस्तों, बात करें प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, तो भारतमाला प्रोजेक्ट, देश भर में नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बनाए जा रहे हैं ताकि राज्यों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट और कोस्टल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर व्यापार और शिपिंग को मजबूत बनाया जा रहा है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन, इंडियन रेलवेज के तहत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, कवच सेफ्टी सिस्टम पर काम हो रहा है। 2026 तक पीएम गति शक्ति के तहत 300 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है।
1: जी दोस्तों, डिजिटल एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में स्मार्ट सिटीज़, 5G नेटवर्क्स, भारत नेट इंटरनेट प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। जी दोस्तों, रोजगार और विकास की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में नए अवसर भी बढ़ रहे हैं।
0: साथ ही सरकार का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और बेटर कनेक्टेड नेशन बनाना है। इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान देश को मॉडर्न, कनेक्टेड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज में और मजबूत स्थान बना सकता है।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूथ एम्पावरमेंट थ्रू सेट डेकोरेशन। आज के समय में सेट डेकोरेशन इवेंट डिजाइनिंग केवल सजावट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युवाओं के लिए एक बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है। फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, वेडिंग्स, OTT प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में स्किल्ड सेट डेकोरेटर्स और डिजाइनर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। भारत की एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री युवाओं को क्रिएटिविटी, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए अवसर दे रही है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, अवार्ड शो, एग्जीबिशंस और फिल्मों में आकर्षक सेट्स तैयार करने के लिए हज़ारों युवाओं को काम मिल रहा है। मानसी, सेट डेकोरेटर कौन होता है?
1: जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि सेट डेकोरेटर वह व्यक्ति है जो स्टेट डेकोरेशन, फिल्म सेट्स, वेडिंग थीम्स, एग्जीबिशन स्टॉल्स, थिएटर बैकग्राउंड, लाइटनिंग एंड प्रॉप्स को डिज़ाइन करता है, ताकि किसी भी कार्यक्रम या कहानी को विजुअली अट्रैक्टिव बनाया जा सके। आज OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्मों के बढ़ने से इस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है, और इसमें जो यूथ एम्पावरमेंट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे यह क्षेत्र युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिव स्किल्स, लीडरशिप, टीम वर्क सिखाता है। कई युवा आज अपना खुद का डेकोरेशन बिजनेस और इवेंट स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं, और सरकार भी स्किल इंडिया, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के माध्यम से युवाओं को स्किल बेस्ड करियर की ओर बढ़ावा दे रही है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स है कि आप अच्छे सेट डेकोरेटर बने, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइनिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बजट मैनेजमेंट, टीम डेकोरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। आज 3D डिज़ाइनिंग और डिजिटल विजुअलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग भी बढ़ रहा है।
1: जी दोस्तों, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस फील्ड में युवा फिल्म सेट डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, वेडिंग डेकोरेटर, इवेंट डिज़ाइनर, एग्जीबिशन डिज़ाइनर, थिएटर सेट आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स भी प्रोडक्शन डिज़ाइन और सेट डेकोरेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज भी उपलब्ध करा रहे हैं।
0: सेट डेकोरेशन आज केवल कला नहीं बल्कि यूथ एम्पावरमेंट का मजबूत माध्यम बन चुका है। यह क्षेत्र युवाओं को क्रिएटिविटी के साथ रोजगार, पहचान और एंटरप्रेन्योरशिप का अवसर देता है। आने वाले समय में इंडिया की एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज और भी तेजी से बढ़ेंगी।

0: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसी पर्सनालिटीज़ की जिन्होंने अपने स्ट्रगल, हार्डवर्क और पैशन से सक्सेस का अलग बेंचमार्क सेट किया। सबसे पहले जानेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले सुंदर पिचाई के बारे में। इसके बाद मिलेंगे भारतीय उद्योग जगत के दूरदर्शी नेता राहुल बजाज से, और इसके बाद मिलेंगे हम साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार और जनसेवक नंदमूरी बालकृष्णन की। तो दोस्तों
1: शुरू करते हैं आज का ये खास सफ़र। सुंदर पिचई का जन्म 10 जून 1972 को मदुरई, तमिलनाडु में हुआ। उनका पूरा नाम पिचई सुंदर राजन था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माता स्टेनोग्राफर थी। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई। उनकी मेमोरी इतनी तेज़ थी कि वे एक बार डायल किया हुआ नंबर आसानी से याद रख लेते थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वे हायर स्टडीज़ के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए।
0: जी दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने कुछ समय प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग के एरिया में काम भी किया। 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यही व्यक्ति पूरी कंपनी का नेतृत्व करेगा। गूगल में उन्होंने शुरुआत में गूगल टूल बार और सर्च प्रोडक्ट पर काम किया। बाद में उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लीड किया जिसने इंटरनेट की दुनिया बदल दी।
1: दोस्तों, आज हम में से ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम के डेवलपमेंट और सक्सेस में सुंदर पिचई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब क्रोम लॉन्च हुआ तब ब्राउज़र मार्केट में पहले से ही कई बड़े ब्राउज़र मौजूद थे, लेकिन पिचई की विजन और लीडरशिप के कारण क्रोम दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र बन गया।
0: जी दोस्तों, क्रोम की सफलता के बाद सुंदर पिचाई को गूगल की कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड और अन्य प्रोडक्ट्स की टीम को भी लीड किया।
1: उनकी काम लीडरशिप स्टाइल, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने उन्हें कंपनी के सबसे भरोसेमंद लीडर्स में शामिल कर दिया। 2015 में उन्हें गूगल का CEO नियुक्त किया गया। इसके बाद 2019 में वे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी CEO बने।
0: जी दोस्तों, सुंदर पिचाई की सबसे बड़ी खासियत उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी मानी जाती है। वे मानते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों की बात सुने, नई सोच को प्रोत्साहित करे और टीम को आगे बढ़ने का अवसर भी दे। उनकी लीडरशिप में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
1: उनकी लीडरशिप में गूगल ने AI बेस्ड टूल्स, लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर इनोवेशंस और एजुकेशन सॉल्यूशंस पर

0: एक्सटेंसिवली वर्क किया है। टेक्नोलॉजी को अधिक लोगों तक पहुंचाने और उसे उपयोगी बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन उल्लेखनीय माना जाता है। उनका एक फेमस कोट है, वियर और फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर, मतलब असफलताओं से डरिए मत बल्कि उनसे सीखिए।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गीतांजलि आपने। अब हम दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया से अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया की ओर। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय इंडस्ट्री वर्ल्ड को नई डायरेक्शन दी, क्वालिटी, ऑनेस्टी और लीडरशिप को बिजनेस की पहचान भी बनाया। आइए जानते हैं फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज के बारे में।
0: राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में हुआ था। उनके दादा जमनालाल बजाज इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। 1960 में राहुल बजाज ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और धीरे धीरे लीडरशिप संभाली। उन्होंने बजाज को एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ग्लोबल ऑटोमोबाइल जायंट में बदल दिया। ईयर 2006 में राहुल बजाज को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था। राहुल बजाज को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और ऑनर्स से सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2001 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2017 में।
1: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार और जनसेवक नंदमुरी बालकृष्ण की। जी दोस्तों, नंदमुरी बालकृष्ण का जन्म 10 जून 1960 को चेन्नई में हुआ था। फिल्मी दुनिया में प्यार से बालैया के नाम से प्रसिद्ध नंदमुरी बालकृष्ण ने अपने दमदार एक्टिंग, शानदार डायलॉग डिलीवरी और जनता के प्रति समर्पण से एक अलग पहचान बनाई है। वे महान अभिनेता, निर्देशक और पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के पुत्र भी है। बालकृष्ण ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहचान भी बनाई।
0: उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना एक्टिंग डेब्यू ततम्मा कला से किया। उन्होंने अडल्ट रोल में अपना डेब्यू 1984 में ससामे जीवितम मूवी से किया। उनकी फिल्म में हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, माइथोलॉजिकल और साइंस फिक्शन कैरेक्टर्स का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। नंदमुरी बालकृष्ण ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल है अखंडा, सिम्हा, आदित्य 369, गौतमी पुत्रा सतीकर्णी, भैरवा द्वीपम। फिल्मों के साथ साथ बालकृष्ण राजनीति में भी सक्रिय हैं। वे तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। नंदमुरी बालकृष्ण केवल एक अभिनेता राजनेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाज सेवी भी है। उन्होंने NBK ट्रस्ट बनाया, बसाकवत्रम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं।
1: उन्हें उनकी टैलेंट और मेहनत के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिले, जैसे कि बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण जो कि उन्हें 2025 में मिला, NTR नेशनल अवार्ड्स 2024 में, नंदी अवार्ड्स 2001 में और सिनेमा 2014 में। ये फॉर बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर लेजेंड, थर्ड IIFA उत्सवम गोल्डन लेगेसी अवार्ड। तो दोस्तों, यह थी कहानी नंदमुरी बालकृष्णन की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने फिल्म, राजनीति और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये दोस्तों, अब तक हमने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वर्ल्ड के तीन महान पर्सनालिटीज और तीन इंस्पायरिंग स्टोरीज भी जानी। अब समय है मनोरंजन और संगीत की दुनिया के एक ऐसे सितारे की बात करने का, जिनकी आवाज़ सुनते ही माहौल में ऊर्जा भर जाती है। आइए मिलते हैं लोकप्रिय गायक मीका सिंह से। मीका सिंह का जन्म 10 जून 1977 को डूंगरपुर, वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम अमरिक सिंह है। वे एक संगीत प्रेमी परिवार से आते हैं। उनके बड़े भाई है प्रसिद्ध गायक डेलर मेहंदी, जिनकी सफलता ने संगीत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया। उनके कुछ फेमस सॉन्ग्स हैं, जैसे कि बस एक किंग, मौजा ही मौजा, इबन बतूता, धन्नो, धिंक चिका और चिंता ताता। मीका सिंह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एनर्जेटिक सिंगिंग।
4: दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक ऐसा अलग तरह की ऊर्जा और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। चाहे पार्टी सॉन्ग हो, डांस सॉन्ग हो या लाइव कॉन्सर्ट, मीका हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करने में सफल रहते हैं। दोस्तों, मीका सिंह की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जैसे कि अपनी अलग पहचान बनाइए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, स्किल पर काम करते रहिए, मेहनत और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी कारण उन्हें उनके टैलेंट और मेहनत के लिए कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी मिले, जैसे आईफा अवार्ड उन्हें 2012, 13 और 15 में मिला, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2014 में, स्टार डस्ट अवार्ड 2015 में एंड इंडियन टेली अवार्ड 2015 में। तो दोस्तों, चाहे आपका ड्रीम टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस में हो या म्यूज़िक में, याद रखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्त

0: दोस्तों, अब समय है ऐसे खिलाड़ी की कहानी जानने का जिसने शारीरिक चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल दिया। दोस्तों, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत की कैसे खिलाड़ी से जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। आइए मिलते भारत के गौरव पैरालंपिक इतिहास के महानतम खिलाड़ी में से एक देवेंद्र झाझरिया से।
1: जी दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया का जन्म 10 जून 1981 को राजस्थान के चूरू में हुआ था, लेकिन जब वे केवल 8 वर्ष के थे तब उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। खेलते समय उन्होंने गलती से एक हाई वोल्टेज बिजली के वायर को छू लिया। इस दुर्घटना में उनका बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों को उससे काटना भी पड़ा। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने खेलों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। विशेष रूप से भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में उनकी रुचि बढ़ती गई। कई लोगों ने उन्हें कहा कि एक हाथ से खेलों में आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन देवेंद्र ने इस बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार अभ्यास किया, कठिन मेहनत भी की और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनानी शुरू कर दी। साल 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित 2004 समर पैरालंपिक्स में देवेंद्र झाझरिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भाला फेंक मुकाबले में 62.15 मीटर का थ्रो करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी जीत लिया। पहले स्वर्ण पदक के बाद साल 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 समर पैरालंपिक्स में उन्होंने फिर से इतिहास रचा। उन्होंने 63.97 मीटर का थ्रो किया, अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरा स्वर्ण पदक भी जीत लिया।
0: इस उपलब्धि के साथ वे दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बन गए। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भी देवेंद्र झाझरिया ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। उनकी निरंतरता, अनुशासन और समर्पण युवाओं के लिए शानदार उदाहरण है। देवेंद्र झाझरिया को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, FICC पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, खेलों की दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले देवेंद्र झाझरिया की प्रेरक यात्रा के बाद हम बढ़ते हैं ऐसे खिलाड़ी की ओर जिन्होंने भारतीय बैडमिंटन को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिलते हैं महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण से।
1: जी दोस्तों, प्रकाश पादुकोण का जन्म 10 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता स्वयं बैडमिंटन से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही प्रकाश का झुकाव इस खेल की ओर हो गया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बैडमिंटन रैकेट हाथ में लिया और जल्द ही अपनी प्रतिभा को सबको प्रभावित करना शुरू भी कर दिया। 1970 के दशक में प्रकाश पादुकोण भारतीय बैडमिंटन के सबसे बड़े नाम बनकर उभरे। उन्होंने लगातार कई बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित भी करी। उनकी खेल शैली बेहद शांत, संतुलित और रणनीतिक थी। वे सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि तकनीक और धैर्य पर भरोसा करते थे।
0: यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युवाओं के लिए सीख है कि सफलता सिर्फ धैर्य, प्रतिभा से नहीं बल्कि सही रणनीति और लगातार अभ्यास से मिलती है। प्रकाश पादुकोण का सबसे बड़ा सपना था भारत को विश्व बैडमिंटन में पहचान दिलाना। उनकी मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम 1980 में देखने को मिला, जब उन्होंने प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को बैडमिंटन की दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है। इसे जीतना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। प्रकाश पादुकोण इसी प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक मानी जाती है।
1: खेल से संन्यास लेने के बाद प्रकाश पादुकोण ने भारतीय बैडमिंटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास भी किए। प्रकाश पादुकोण को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोस्तों, अगर सपने बड़े हो या छोटे, उन्हें सच करने के लिए मेहनत, विश्वास और निरंतर प्रयास सबसे ज़रूरी है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के इतिहास की। तो सबसे पहले 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक फरमान के बाद पेरिस फ्रांस में स्थित जॉर्डन डेस प्लांट्स को आधिकारिक तौर पर एक सार्वजनिक संग्रहालय और वनस्पति उद्यान के रूप में खोला गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1891 की। तो महात्मा गांधी के औपचारिक रूप से लंदन के बाद में प्रवेश दिया गया, जिससे उन्हें बैरिस्टर के रूप में वकालत करने की अनुमति भी मिल गई।
5: अब बात करते हैं 1966 की। तो प्रसिद्ध MIG लड़ाकू विमान को पहली बार भारत में महाराष्ट्र के नासिक स्थित ओझर हवाई अड्डे पर डिज़ाइन किया गया था। साथ ही 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अपना पहला

0: टेस्ट मैच जीतकर क्रिकेट जगत में एक बड़ी जीत हासिल की।
1: जी दोस्तों, 1999 में स्लोबोदान मिलोसेविच द्वारा कोसेवो के सर्बियाई सेनाओं को वापस देने पर सहमति जताने के बाद नाटो ने यूगोस्लाविया के खिलाफ अपने हवाई हमलों को निलंबित भी कर दिया। और इसी के बाद 2026 में
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड बनाया। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्बाध कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया।
1: जी दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं आज के शेयर बाजार की। तो सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ 73,983 अंक पर बंद हुआ, यानी करीब 64 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 में मामूली गिरावट रही और ये 23,214 अंक पर बंद हुआ।

0: दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलने के वादे के साथ, आज मैं थी आपकी रेडियो दोस्त गीतांजलि और मेरे साथ
1: मानसी।
0: नमस्कार।
2: युवा साथियों ने सुना अभी उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का व्यापक केंद्र है, जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुनते हैं हिंदी में समाचार।
3: अरोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को

0: प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM मेन 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिट उदयपुर। इस कार्यक्रम में आज दंत चिकित्सा के अंतर्गत आधुनिक तकनीक के साथ डेंटल इम्प्लांट और कॉस्मेटिक उपचार विषय पर डॉक्टर रजत वार्ष्णेय से बातचीत कर रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़।

0: श्रोताओं, यह कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ कार्यक्रम मौजूद है डॉक्टर रजत वार्ष्णेय। आप दंत चिकित्सक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, और आज हम कार्यक्रम में इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो दंत चिकित्सा में, खासतौर से दांतों से जुड़े जितनी भी चिकित्सा में जो परिवर्तन हुए हैं और जो आधुनिक समय में जो चीज़ें हम कर पा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक दफ़ा और रूबरू करने के लिए उदयपुर के श्रोताओं से, और उदयपुर की जनता और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, जो कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी है, और अगर हम बात करें कि जो दंत चिकित्सा ओवर द टाइम, हम एक पहले एक समय हुआ करता था कि दांत दर्द होने पर या फिर RCT करने पर या फिलिंग करने पर या क्लीनिंग करने के लिए ही डेंटिस्ट के पास पहुंचते थे, लेकिन अभी समय के हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है और काफ़ी चीज़ें फैंसी हो चुकी है, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए सर।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो एक एसेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होके काफ़ी हद तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी हो गया है, और हम चूंकि आज के युग में जी रहे हैं जिसमें कि हमारी अपीयरेंस काफ़ी मैटर करती है, हमारा प्रोफेशन कई बार डिमांड करता है कि हमारी स्माइल अच्छी हो, हमारे दांत अच्छे हों, तो उसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द का ट्रीटमेंट है तभी डेंटिस्ट के पास जाना है, मसाला भरना है या सफाई करनी है तो ही डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर आपको अपनी स्माइल डिज़ाइन करवानी है तो भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। आपको जैसे आजकल बोलते हैं बॉलीवुड स्माइल का ज़माना है कि एकदम परफेक्टली अलाइन दांत होने चाहिए, उनका रंग एकदम बराबर होना चाहिए, शेप बराबर होनी चाहिए, तो उसके लिए जाते हैं। जितने भी ये ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं उसमें उन सब की जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उन सब की उसके पहले स्माइल डिज़ाइनिंग होती है सभी की, क्योंकि जब वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक अच्छी स्माइल होना ज़रूरी है, तो ये स्माइल उनको डेंटिस्ट ही कार्व करके या क्राफ्ट करके दे सकते हैं। तो हाँ, ये जो कॉस्मेटिक चीज़ है वो आज की तारीख में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल ट्रीटमेंट के साथ में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम रेशियो देखें कि आपके क्लिनिक पर या फिर आपको जो जो भी विजिट करने आते हैं, कितने प्रतिशत ये आधुनिकता वाले पेशेंट आपको आ चुके हैं, क्योंकि लोग आजकल दर्द के लिए तो पेन किलर लेके दर्द सहन कर लेते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कहीं कम ना हो इसके लिए वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च भी कर रहे हैं। हर आदमी खूबसूरत दिखना चाहता है और कॉन्फिडेंट भी लगना चाहता है, तो क्या फुटफॉल रहता है अभी वर्तमान समय में इन सब?
1: मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे करीब 17 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो शुरुआत में आज से अगर 10-15 साल की पुरानी बात करूँ तो तब इतने लोग नहीं आया करते थे, सही बात है, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। प्लस क्या हुआ है कि आजकल सब जने इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, तो वो काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं वो क्वेरीज लेके भी हमारे पास आते हैं, तो अब फुटफॉल वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है ऐसे पेशेंट्स का भी। और शुरुआत में तो ऐसा होता था कि सिर्फ जो यंग जनरेशन है सिर्फ वही इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि सभी एज उम्र के जो लोग हैं वो सभी इसी चीज़ को चाहते हैं कि भाई हम अच्छे दिखें, हमारे दांत अच्छे हों, हमारी स्माइल अच्छी हो, क्योंकि अब एज उसका कोई बैरियर नहीं रहा है कि हम अगर सिर्फ जवान है तो हमारे दांत अच्छे होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज सभी लोग चाहते हैं। तो धीरे धीरे लोगों में इसकी जागरूकता भी बढ़ रही है, और चूंकि सोशल मीडिया इसमें इम्पैक्ट रखता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये अब लुभाने लगा है लोगों को कि हमारी स्माइल जो है वो डिज़ाइन होकर और अच्छी दिखनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, ज़माना आधुनिक हो गया है, ज़माना डिजिटल भी हो गया है, इसी के साथ साथ एक टर्म डिजिटल डेंटिस्ट्री चल रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को बताओ कि ये डिजिटल डेंटिस्ट्री वास्तव में क्या टर्म है, और ये मरीजों के लिए, या मरीज नहीं कहेंगे, जो लोग ये करवाना चाहते हैं उनके लिए कितना उपयोगी है?
1: डिजिटल डेंटिस्ट्री जो है वो आज की सबसे युग की सबसे नई चीज़ है और एक रिवोल्यूशन है, जो कि और आगे आने वाले समय में भी ये पूरे डेंटल ट्रीटमेंट को चेंज कर देगा। डिजिटल डेंटिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहले कन्वेंशनल तरीके से जब हमें दांत लगाने, कृत्रिम दांत लगाने होते थे, उसके लिए जैसे कैप बनानी है या कृत्रिम दांत बनाने हैं उसके लिए हमें नाप लेना पड़ता था, एक तरह की ट्रे होती थी उसमें हम नाप लेने का जो सॉल्यूशन है वो लगाते थे, वो पेशेंट के मुंह में रखते थे, फिर उससे नाप आता था। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है, अब इसकी जगह जो डिजिटल डेंटिस्ट्री में स्कैनर्स आ गए हैं, इंट्राओरल स्कैनर आ गए हैं, वो एक तरह के हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं जो कि आपके दांत का परफेक्ट स्कैन लेते हैं, तो उसमें आपको अपने मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्लेट या किसी भी प्रकार का कोई मसाला रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर से आपका जो स्कैनर है वो आपका फ़ोटो खींच लेगा और उसी के बेसिस पे आपके दांत बन जाएंगे। और इस डिजिटल डेंटिस्ट्री के मदद से ये दांत जल्दी बनने लग गए हैं, अब टर्म आने लग गई है सिंगल डे डेंटिस्ट्री, जैसे पहले हम जाते थे कि भाई हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनके

0: बस हमें 3 बार जाना है, 4 बार जाना है, 5 बार जाना है। अब एक ही दिन के अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर, क्योंकि ये डिजिटल इम्प्रेशन होने लग गया है, तो उसके हेल्प से हम जो कैप है वो बहुत जल्दी बना सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पहले का ज़माना ये था कि एक तरह से डेंटिस्ट के साथ रिश्ता सा बन जाता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होती थी, बार बार हमें आना पड़ता था। वो जो डिजिटल डेंटिस्ट्री की जो हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो जो आपने ये इक्विपमेंट्स या टेक्निक बताई, तो क्या इसमें कोई एक 3D इमेज क्रिएट कर ली जाती है आपके माउथ की, या फिर उसका अगर कर दी जाती है तो ये तकनीक कितनी प्रभावी, क्योंकि दांतों के बीच का टेढ़ापन, रेशियो प्रोपोर्शन, उस गैप को एग्जैक्टली मैच करना, और वो भी दर्द के बिना, कितना संभव हो पाया वर्तमान में?
0: नहीं, ये काफ़ी प्रभावी है और काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है। जब हम सादा तरीके से नाप लेते हैं तो उसमें कई बार हाथ हिल जाता है, या पेशेंट हिल गया तो उसकी वजह से उनका जो नाप है वो बिगड़ जाता है, या जब उसे हम पोर करके कास्ट बना रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्लस इसके अलावा, क्योंकि आपने जैसे बोला कि कितना प्रिसीजन इसमें रहता है, कितना रहता है, ये पेशेंट जो है स्क्रीन पे अपने दांत के साथ देख भी सकता है कि मेरे दांत फ्यूचर में कैसे दिखेंगे। क्योंकि जब हम डिजिटल डेंटिस्ट्री कर रहे हैं तो सारी चीज़ स्क्रीन पर है, लैपटॉप पर है, मोबाइल पर है, तो हम चीज़ खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। उस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें उस पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो पेशेंट खुद भी अपने ट्रीटमेंट का आउटकम देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट मेरे दांत कैसे दिखने वाले हैं। जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो ये देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट मेरे टेढ़े मेढ़े दांत कैसे दिखेंगे। जिनके कैप लगने वाले हैं वो ये देख सकते हैं कि कैप लगने के बाद मेरी मुस्कुराहट कैसी दिखेगी। तो ये काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी बेनिफिशियल है दोनों ही, पेशेंट्स के लिए भी और डेंटिस्ट के लिए भी।
1: आधुनिक डेंटिस्ट्री और नित नए जो इलाज चल रहे हैं उनके बारे में और भी बातें जारी रखेंगे। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत वार्ष्णेय। आप डेंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, और ब्रेक में जाने से पहले हमने अत्याधुनिक लेजर डेंटिस्ट्री में आए और नवीनतम तकनीक के बारे में बात की। डॉक्टर साहब, एक पुराने समय की एक बात याद आती है कि कई बार बच्चे और घरों में जब कोई दांत का इलाज कराने जाता था तो कहा जाता था कि आज आइसक्रीम खाने को मिलेगी, क्योंकि पेन होता था, एक पेन किलर दिया जाता था और कुछ खाने के लिए मना किया जाता था। लेकिन जो एडवांसमेंट अभी हुए हैं, ख़ास तौर से चिकित्सा के और भी क्षेत्र में, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी प्रभावी साबित हुआ है, क्योंकि उसमें इंसेशन काफ़ी कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और बिना चीराटा का इलाज होता है। तो क्या आधुनिक समय में इन दांतों के इलाज में लेज़र ट्रीटमेंट कितना प्रभावी रहा है?
1: लेज़र्स जो हैं वो भी एक रेवोल्यूशन है डेंटल ट्रीटमेंट में, और लेज़र्स कई प्रकार के आते हैं, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू लेज़र्स भी होते हैं और हार्ड टिश्यू लेज़र्स भी होते हैं। तो और लेज़र जो है वो एक तरह का, आप मान लें कि डेंटिस्ट के हाथ में एक तरह की ब्लेड है जो कि बहुत फाइन है, बहुत प्रिसाइज है, जिससे कि ब्लीडिंग कम हो रही है, जिससे कि हीलिंग जल्दी हो रही है। तो जो सॉफ्ट टिश्यू लेज़र्स हैं वो हमारे मसूड़ों के जितने भी रोग हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर हमें मसूड़े में कहीं चीरा लगाना है, कट लगाना है, अगर हम लेज़र से लगा रहे हैं तो हाँ, वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत कम होगी, ब्लीडिंग कम होगी, पेशेंट को सूजन कम आएगी, तो सूजन कम आएगी तो उसकी हीलिंग जो है वो फास्ट होगी। ऐसे ही हार्ड टिश्यू लेज़र्स भी आते हैं जो कि दांत में जो कैविटी होती है, सड़न होती है, उसको साफ करने के काम आते हैं। उसमें भी यही बात है कि पेशेंट की जो स्ट्रक्चर है, दांत के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी को कम से कम नुकसान पहुंचता है, और उसमें काफ़ी प्रिसाइज, क्योंकि वो बहुत ही एक प्रिसाइज टूल है, तो जो कटिंग है वो बहुत प्रिसाइज होती है और हीलिंग भी बहुत प्रिसाइज होती है। तो लेज़र्स काफ़ी हैं, बस उसमें एक कॉस्ट फैक्टर रहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो टेक्नोलॉजी है, एवरी टेक्नोलॉजी इट कम्स विद अ कॉस्ट, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर रहता है। बाकी हाँ, लेज़र्स जो हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स में आजकल इनकॉर्पोरेट भी हो रही हैं।
0: डॉक्टर साहब, अगर छोटी मोटी कोई समस्या है तो हम वैसे ही डेंटिस्ट बड़े सहूलियत से वो उसको सॉल्यूशन कर देता है, लेकिन आप दंत चिकित्सक के साथ साथ इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं, और अभी हमने जो बात की कि कई लोग डेंटल इम्प्लांट भी करवाते हैं, और अब इन सब जो इलाज है इनका कोई उम्र भी नहीं रहा है। पहले एक मिथ हुआ करते थे कि हम ये दांत निकालेंगे तो नज़र कमज़ोर हो जाएगी, इन मिथ से काफ़ी लोग अब ऊपर उठ भी चुके हैं। तो ये डेंटल इम्प्लांट जो हम करते हैं, आप थोड़ा सा श्रोताओं को बताओ कि क्या है और किन एज कैटेगरी या किन लोगों के लिए उपयुक्त है, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस ला सके अपने जीवन में कि जो गैप है उसको फिल किया जा सके, या कोई दांत टूट गया है किसी चोट की वजह से उन्हें वापस कृत्रिम दांत लगाया जा सके, क्या है आप बताएं?
1: देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक तरह का स्क्रू है जो कि टाइटेनियम का बना होता है, जो कि बायो कंपैटिबल होती है और हमारी हड्डी के लिए बना होता है। तो सबसे पहले तो अगर किसी के मन में ये संशय है कि क्या हमारा जो डेंटल इम्प्लांट है वो हमारी हड्डी में इन्फेक्शन कुछ करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बना ही हड्डी के लिए है, उस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, उसके बाद में वो एस्टैब्लिश

है जो उसका स्ट्रक्चर है, तो इसलिए डेंटल इम्प्लांट्स कंप्लीटली सेफ हैं। और हाँ, आजकल इम्प्लांट्स जो है वो हर एज ग्रुप में हो सकते हैं, जो पेशेंट वो वयस्क होना चाहिए। बच्चों में इम्प्लांट्स नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों की हड्डी जो होती है वो ग्रो हो रही होती है, तो एक बार जब पेशेंट वयस्क हो चुके हैं तो उसके बाद में किसी भी उम्र तक, 60 70 80 साल तक की उम्र तक डेंटल इम्प्लांट्स हो सकते हैं, वो कंप्लीटली सेफ हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उतना ही आसान है जितना कि एक दांत निकालना, जितना आसान एक दांत निकालना है उतना ही, मैं तो कहूँगा उससे और आसान डेंटल इम्प्लांट।

0: 5 दिन के अंदर फिक्स दांत भी लगा सकते हैं। पूरा जबड़ा जो है ऊपर नीचे, मान लीजिए किसी पेशेंट के एक भी दांत नहीं है, तो हम ऊपर नीचे इम्प्लांट करके 3 से 5 दिन के अंदर उनको फिक्स बत्तीसी भी दे सकते हैं। ये भी हमें जो रिसेंट एडवांसेस हैं उसकी वजह से ये भी हम अचीव कर पाए हैं।
1: डॉक्टर साहब, पहले के समय में एक ये चीज़ होता था कि किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आगे निकले हुए हैं, तो उनको ब्रेसेल्स के थ्रू उनको कवरअप किया जाता था और एक शेप में लाया जाता था। तो क्या ये जो डेंटल इम्प्लांट है, ये इससे ऊपर की तकनीक हो चुकी है या फिर आज भी वो ब्रेसेल्स या टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए हम ट्रेडिशनल पैटर्न ही यूज़ करते हैं?
0: नहीं, उसमें भी काफ़ी रिवोल्यूशन आया है, और अब हमें वायरिंग की और जो टेढ़े मेढ़े दांत के लिए जो ब्रेसेस लगते थे उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। उसकी जगह जो है वो क्लियर अलाइनर्स ने ले ली है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट तरह की प्लेट होती हैं जो हमें पहननी होती हैं दिन भर। और उसके साथ फ़ायदा ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं आप वो प्लेट निकाल सकते हैं, आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो आप उस प्लेट को निकाल सकते हैं, आपके मुंह में किसी प्रकार का तार नहीं लगा हुआ है जो कि आपके मसूड़े पे कहीं घाव करे या आपका खाना फंस जाए या आपको ब्रश करने में तकलीफ हो। और जैसे जैसे आप वो प्लेट्स पहनते हैं उसमें सेट ऑफ अलाइनर्स होते हैं, हर 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में उसे चेंज करना होता है। और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, जैसे कि 6 महीना या 8 महीने का ट्रीटमेंट है, तो उसके अंत में बिना तार के हम उन सभी दांतों को स्ट्रेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लियर अलाइनर्स हैं ये भी काफ़ी रिवोल्यूशनरी और काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है।
1: एक सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जितने भी हम ये आधुनिक जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं और इनके साथ साथ काफ़ी मिथ भी जुड़े हुए रहते हैं। जब हम टेढ़े मेढ़े दांतों की बात करते हैं और यूँ कहते हैं कि इनको ठीक किया जा सकता है, तब ये भी कहा जाता है कि नहीं, एक बार मसूड़ा डैमेज हो गया या फिर एक बार आपका जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है उसमें अगर डैमेज हो गया तो आपको हमेशा यहाँ पर जो मसूड़े के पीछे लॉक होता है वो डिस्टर्ब रहेगा, या फिर आपको हो सकता है ऊपर के दांत छेड़ने के बाद आपको माइग्रेन या फिर नज़र में कमजोरी, ये सब चीज़ें कही जाती थी और सुनी भी गई है। तो इनमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में कोई 1% भी इसमें रिस्क होता है?
0: देखिए, टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट जो है अगर वो सही तकनीक से और सही समय लेके किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। मैंने खुद ने 20 साल पहले अपना ये इलाज करवाया हुआ है और मुझे आज की तारीख में कोई भी चीज़ खाने में पीने में तकलीफ नहीं होती है। मैं सभी खाना पीना आराम से खा पाता हूँ, मुझे कोई माइग्रेन की शिकायत नहीं है, ना मेरे कहीं दांतों में खाना फंसता है। बस हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अगर जल्दीबाजी में कोई ट्रीटमेंट प्लान कर दिया और पेशेंट ने बोला नहीं मुझे तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे दांतों में फास्ट मूवमेंट करवाइए, तो ये जो फास्ट मूवमेंट है वो दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। अगर हम धीरे धीरे और ग्रेजुअली दांतों को मूव करते हैं तो दांतों में सालों साल किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, भले ही वो हम अलाइनर से करें, भले ही हम वो तारों से करें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मरीजों को नहीं आती है।
1: दांतों से जुड़े और भी आधुनिक तकनीक और नित नए जो उपचार है उस पर और भी बातें जारी रखेंगे। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत वार्ष्णेय। आप डेंटिस्ट हैं और साथ ही साथ इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने जो रीसेंट डेवलपमेंट है डेंटिस्ट्री में उसके बारे में बात की, और जो वर्तमान में डॉक्टर साहब अभी चल रहा है जब हम बात करते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, और जो शुरुआत में आपने जिक्र भी किया कि आज के समय का दौर है कि कॉस्मेटिक सर्जरी जिस तरह से हो रही है उस तरह कॉस्मेटिक दांतों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ एक स्माइल डिज़ाइनिंग वाला आपने बात की कि जो भी ब्यूटी पेजेंट होते हैं वो अपने अपनी लुक को बढ़ाने के लिए सब करते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से ये लोगों के लिए उपयोगी भी है?
1: देखिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के अंदर हमारे मसूड़े और हमारे दांत दोनों ही हमारी सुंदरता और हमारी स्माइल के लिए योगदान देते हैं, तो इसमें दोनों ही चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी के मसूड़े जो हैं वो हंसते समय ज़्यादा दिखते हैं, जैसे गमी स्माइल बोलते हैं, तो उन मसूड़ों की रिकॉन्टूरिंग होती है, उसको वापस शेप दी जाती है। मान लीजिए मसूड़ों का जो कलर है वो गुलाबी नहीं होके कुछ भूरा या काले की तरफ है, तो उसकी हम डीपिगमेंटेशन भी करते हैं, वो भी इसके अंदर करी जाती है। और मसूड़ों के साथ में जो ज़्यादा योगदान रहता है स्माइल के अंदर वो होता है दांतों का। तो दांतों में हमने जैसे ब्रेक से पहले बात करी थी कि दांत टेढ़े मेढ़े हों तो उसमें हम अलाइनर्स करते हैं, तो वो तो हमारे दांतों का अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। प्लस अगर दांत का कलर हमें अच्छा करना है तो उसके लिए ब्लीचिंग होती है, और ब्लीचिंग हम जैसे पहले भी श्रोताओं से बात कर चुके हैं कि लेज़र्स जो होती हैं, लेज़र्स हमें ब्लीचिंग में भी हेल्प करती हैं, तो उससे हमारे दांतों का जो शेड एनहांसमेंट होता है जो कि हमारे अपीयरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी होता है। तो लेज़र से हम ब्लीचिंग कर सकते हैं, यूवी लाइट से हम ब्लीचिंग कर सकते हैं, प्लस अलाइनर से हम अपने दांतों को अलाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे दांतों में फिर भी कुछ जो उनका शेप अगर चेंज करना हो तो विनियर्स कर सकते हैं। विनियर्स एक तरह के बहुत ही पतले और सिर्फ दांत में आगे वाले सरफेस पे लगने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो कैप होता है वो तो दांत को चारों तरफ से कवर करता है, जो वीनियर्स होते हैं वो सिर्फ दांतों को आगे से कवर करते हैं और हमारे दांत को स्माइल करते हैं। आप जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की जितनी भी स्माइल ये देखते हैं वो सभी वीनियर्स की देन है, और वो सभी वीनियर्स की वजह से अपनी स्माइल डिज़ाइन करवाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो आपने तकनीक बताई सबसे पहले यूवी रेज के जरिए, या फिर आपने वाइटनिंग या ब्लीचिंग के जरिए उनको सफ़ेद दिखाना, या विनियर्स जिसके बारे में आपने जिक्र किया जो लगभग आजकल हर एक सेलिब्रिटी या जो व्यक्ति स्क्रीन पे आ रहा है वो करता है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और भी कही जाती है कि अगर हम अपने दांतों के सरफेस पर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं या चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनेमल ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए कहा जाता है कि वो लाइफ में एक ही बार दांत के साथ आता है और एक बार

0: वो चला गया तो दांतों की चमक या फिर खुरदुरापन, ये सारी चीज़ें चली जाती। तो क्या ये सारे लेज़र ट्रीटमेंट हुए, विनियर्स हुए, ब्लीचिंग हुई, क्या इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इनेमल पर?
1: नहीं, इनका इनेमल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ब्लीचिंग है या जो लेज़र्स हैं उनका इनेमल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सिर्फ हमारे दांत का जो कलर है वो चेंज कर रहे होते हैं। और ब्लीचिंग और लेज़र ट्रीटमेंट से दांतों की जो स्मूथनेस है या जो शाइनिंग है उसमें भी किसी प्रकार का फ़र्क नहीं आता है। उसमें कोई सरफेस रफनेस भी नहीं आती है, सरफेस बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। जो विनियर्स हैं वो तो हमारे दांत का जो सरफेस है वो और एनहेंस कर रहे हैं, क्योंकि उससे तो हमें और चमकदार और शाइनी और सफ़ेद सरफेस मिल रहा है। अगर हमें किसी प्रकार का कोई इनेमल लॉस हो भी रहा है तो उसकी जगह जो विनियर लग रहा है वो उस इनेमल लॉस को ख़त्म कर दे रहा है। क्योंकि जितना हम इनेमल उस विनियर को लगाने के लिए, और वो मुश्किल से 0.5 से 1 मिलीमीटर थिकनेस के ही होते हैं, सिर्फ हमें उतना ही इनेमल हटाना होता है। और उतना इनेमल हटाने के बाद में उसके ऊपर चूंकि विनियर्स वापस लग जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ पेशेंट्स को नहीं आती है।
0: कहने का मतलब विनियर्स एक एक्स्ट्रा लेयर हुई, जैसे जब बच्चा नया एडमिशन लेता है और नए बुक्स और नोटबुक्स लाता है उसके ऊपर जो कवर लगाता है, इस तरह से वो समझा जाए इसको?
1: हाँ, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। बस उसको, क्योंकि थिकनेस दांत की ज़्यादा ना बढ़ जाए तो जितनी विनियर की थिकनेस है सिर्फ उतना दांत को कम किया जाता है और फिर वो उतनी ही थिकनेस वापस से विनियर से रिस्टोर हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, आज के ज़माने में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हर एक व्यक्ति को हर एक सॉल्यूशन अपनी जगह पे चाहिए। अगर वो घर पे बैठा है तो उसको सॉल्यूशन वहीं चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी ये है कि AI का ज़माना है और डॉक्टर्स तक तो इंसान बहुत बाद में पहुँचता है। कई चीज़ें एनहेंस करने के लिए या फिर अपनी ब्यूटी या खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लोग घर बैठे सॉल्यूशंस सोशल मीडिया पे या AI पर ढूंढ लेते हैं। और कई सारे प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बड़ा फैंसी तरीके से उनको प्रेजेंट भी करते हैं। ऐसा कैसा कुछ दांतों से जुड़े विषयों पर भी हो सकता है। कई बार कहा जाता है कि आपको ये चीज़ हो रही है तो ये वाला ऑयल और ये वाला सॉल्यूशन है, इसको आप अपने दांतों पर लगाओ, ये हो जाएगा। इस तेल में ये मिला के ये करो, ये सब चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दांतों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और जो अगर किसी ने ट्रीटमेंट करवाया है किसी तरह का, तो उस पर किस तरह से एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है?
1: देखिए, हमारा जो मुंह है और हमारा जो दांत है वो सभी को ये समझना पड़ेगा कि वो कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। क्योंकि उससे जो नुकसान पहुंचने वाला है वो हमें खुद को ही पहुंचने वाला है। और हमारी जो ओरल कैविटी है वो हमारे पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे खाने की नली है, वो हमारे मुंह से ही शुरू होती है। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट अपने मुंह के अंदर करेंगे वो हमारी ओरल कैविटी को तो अफेक्ट करेगा ही, साथ में पूरे शरीर को करेगा। तो इस प्रकार के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि ना करें। और किसी की सुन के, सिर्फ अपने किसी कलीग की, अपने मित्र की, अपने परिवार वालों की सुन के किसी चीज़ को ना करें। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। जो चीज़ किसी उनके मित्र के लिए काम करी है, जो दवाई या जो प्रक्रिया, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए भी सेम ही काम करेगी। क्योंकि इंसानी शरीर में हमेशा 1+1 2 नहीं होता है। तो सभी के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है, सभी के लिए दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, सभी की बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, सभी के बॉडी का जो ट्रीटमेंट के लिए रिएक्शन है वो अलग होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट खुद पे ना करके और किसी एक्सपर्ट के निर्देश में और उसकी जांच में ही अगर करवाया जाए तो वही आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है।
0: डॉक्टर साहब, दांतों के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जब तक आपके दांत में दर्द नहीं होता तब तक आपको डेंटिस्ट याद नहीं आता। और आम तौर पे क्योंकि जागरूकता बढ़ चुकी है आज के ज़माने में, काफ़ी सारे कंटेंट और काफ़ी सारे सोर्सेज आपको घर बैठे उपलब्ध हैं। तो कई जागरूकता की वजह से लोगों ने हेल्थ टेस्ट कराने शुरू किए और अपने डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स को लेकर वो सजग भी हो रहे हैं कि हाँ ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ये सब बढ़ा है। लेकिन दांतों का रूटीन टेस्ट अमूमन शायद 1% लोग भी शायद ना करवाते हो, ये कितना ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में दांत से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो उसके लिए?
1: देखिए, रूटीन चेकअप जो है वो डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो आपको उस समय जो तकलीफ थी उसको ठीक कर रहा है, लेकिन आपके आगे के दांतों के जो स्वास्थ्य है उसके लिए अगर आप डेंटिस्ट के पास में रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर अफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसा आपने बोला कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक मरीज को लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन दर्द जब होता है, जब वो हमारा सड़न जो होती है वो दांत के अंदर तक पहुंच गई होती है, दांत की जड़ों तक पहुंच गई होती है, दांत की नसों तक

0: पहुंच गई होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो जैसे जैसे हम अपने ट्रीटमेंट को लेट करते हैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ट्रीटमेंट की जो तकलीफ है वो भी बढ़ती जाती है और खर्चा भी बढ़ता जाता है. अगर इन हम इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, हम 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को सिर्फ चेकअप करवाएं, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ होगी वो हमको नज़र नहीं आएगी. हाँ, डेंटिस्ट को ज़रूर आ सकती है, बस हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो हमें राय सही दे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है. अगर हम विश्वास नहीं करेंगे उन्हें, ऐसा सोचेंगे कि नहीं ये तो ज़बरदस्ती हमारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में हमें उसके अफेक्ट्स दिखने को मिलेंगे और उसकी वजह से हमारा जो दांतों का स्वास्थ्य ओवरऑल वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा.
1: दांतों के स्वास्थ्य और उससे जुड़े उपचार पर और भी बातें जारी रहेगी. लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक.

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत वार्ष्णेय। आप दंत चिकित्सक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने जितनी भी नित्य तकनीक थी उनके बारे में बात की, आधुनिक उपचार के बारे में बात की, और किस तरह से हम अपने खूबसूरती को एनहेंस करते हैं, कर सकते हैं, उस पर भी बात की। लेकिन सर, ओरल हाइजीन की जब हम बात करें, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, हालांकि एक सामान्य जानकारी है, लेकिन फिर भी जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं और लोग अवेयर हैं, टीवी एड्स को देखकर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पहले एक साधारण टूथपेस्ट हुआ करता था, लेकिन जब हम आज के विज्ञापन देखते हैं, चारकोल बेस्ड पेस्ट आने लग गए हैं, फ्लेवर्ड पेस्ट आने लग गए हैं, कलरफुल पेस्ट आने लग गए हैं, तो क्या ये जेल बेस्ड जो टूथपेस्ट आने लग गए, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो किस तरह का टूथपेस्ट एक व्यक्ति को काम में लेना चाहिए जिससे वो उसका एनामल भी प्रोटेक्ट रहे और दांत भी स्वस्थ रहें?
1: देखिए, जो टूथपेस्ट हैं ये FMCG इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, तो इसीलिए जितनी भी कंपनीज हैं वो किसी ना किसी प्रकार के उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें उनके, वैसे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन ये सब जो टूथपेस्ट हैं ये ज़्यादा कोई विशेष उसमें हमें फ़ायदा नहीं होता है, जैसा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही ये जो गुलाबी, नीले और मैंगनी टूथपेस्ट या काले टूथपेस्ट हैं वो एज सच हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है अच्छा ब्रश होना। अगर ब्रश हमारा अच्छा है, मुलायम है और हम उसको काम में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं मतलब कि सिर्फ ब्रश रखे रहने से वो ब्रश काम हमारे दांतों को फ़ायदा नहीं करेगा। अगर हम 2 मिनट सवेरे और 2 मिनट रात को सोने से पहले ब्रश और पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कितना भी अच्छा ब्रश हो, कितना भी अच्छा पेस्ट हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो पेस्ट आप ज़रूर यूज़ करें, ब्रश अच्छा यूज़ करें, हर 2 महीने में ब्रश जो है उसे चेंज करें। और हाँ, ये जो हरे नीले पीले जो टूथपेस्ट हैं उन सब के बहकावे में ना जाके नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करें। और अगर दांतों में परेशानी है तो डेंटिस्ट की राय से जो डेंटिस्ट आपको टूथपेस्ट दे रहे हैं वो आप यूज़ करें, क्योंकि ऐसे जो टूथपेस्ट होते हैं उनका अभिप्राय ऐड नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरह की मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, तो वो डेंटिस्ट की सलाह से ही आपको मिल सकते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में आप किसी भी प्रकार का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर तकलीफ है तो उसमें आप अपनी कोई कस्टमाइज अप्रोच ना लगा के, या मेरे कलीग ने, मेरे फैमिली मेम्बर ने ये यूज़ किया तो मैं भी ये यूज़ करके देख लूँ, ऐसा ना करें। एक बार डेंटिस्ट की राय लें, उसके बाद में जो आपके डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं आपको वो वाला टूथपेस्ट आप यूज़ करें तो आपको फ़ायदा रहेगा। और जैसा मैंने बोला कि क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है हमारी ओरल कैविटी, तो उसमें एक्सपेरिमेंट ना करें।
0: आमतौर पर बच्चे पेस्ट करते समय पेस्ट को खा जाते हैं, मीठा लगता है, गले में उतार लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई उसमें तत्व होता है जो आपके हेल्थ के लिए खतरनाक होता है, उसके बारे में भी आप बताएं?
1: हाँ, बच्चों को जो खाने की जो रहती है उसमें जो बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं बाजार में मिलते हैं, बच्चों के पीडियाट्रिक टूथपेस्ट जो होते हैं, उसमें फ्लोराइड का जो कंटेंट होता है, फ्लोराइड की जो मात्रा होती है वो कम रहती है, जिससे कि अगर बच्चे खा लें तो वो उससे उनको उतनी तकलीफ ना हो। तो इसलिए बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट हैं वो अलग हैं, जो भी वयस्क के टूथपेस्ट हैं उससे बच्चों को टूथपेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में सभी बच्चे थोड़ा बहुत जो है वो टूथपेस्ट वो निगल जाते हैं, तो वो उनको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो सिर्फ बच्चों वाले जो टूथपेस्ट हैं वही बच्चों को आप इस्तेमाल करवाएं।
0: डॉक्टर साहब, जाते जाते कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप दें कि खान पान, क्योंकि जो हम खाते हैं, पीते हैं, किस टाइप का हम फूड खा रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों का भी हमारे डेंटल या ओरल हाइजीन पे इम्पैक्ट पड़ता है? ख़ास तौर से ऐसा कोई ड्रिंक या ऐसा कोई खाने का पदार्थ जिससे आपका एनेमल या फिर मसूड़ों में कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है तो उसके बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, खान पान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ओरल हाइजीन के लिए और हमारे जो ओरल स्टेटस है उसके लिए। उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उसकी वजह से हमारे दांत की परत जो है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। प्लस आजकल चूंकि जंक फूड जो है वो काफ़ी हो गया है, जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, वो भी हमारे दांतों में सडन कैविटी जो है वो पैदा करते हैं। जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनको

0: को इन सब चीज़ें सावचेत रहना चाहिए, और ना सिर्फ दांतों के लिए, वो ओवरऑल आपकी जो पूरी बॉडी हेल्थ है उसके लिए भी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का जो प्रयोग है वो थोड़ा कम करें, और अगर हम फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो फ्रूट्स क्या है, अपने आप में ही एक नेचुरल क्लींजर होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नॉर्मल जो रफेज होता है, सलाद होती है, वो हमारे दांतों को अपने आप ही साफ करता है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करने से हमारे दांत स्वतः ही साफ हो सकते हैं, और जो ये इस तरह की ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या जंक फूड्स हैं, उसकी वजह से दांतों में नुकसान बेशक पहुंच सकता है।
1: तो आप थे डॉक्टर रजत वार्ष्णेय, डेंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट, और आज कार्यक्रम आपने दांतों से जुड़े अत्याधुनिक ट्रीटमेंट और उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।
2: अभी आप सुन रहे थे फिट उदयपुर कार्यक्रम में। दंत चिकित्सा के अंतर्गत आधुनिक तकनीक के साथ डेंटल इम्प्लांट और कॉस्मेटिक उपचार विषय पर डॉक्टर रजत वार्ष्णेय से बातचीत कर रहे थे गजेंद्र सिंह राठौड़। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
2: फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आज आपके साथ है आरजे सरिता। प्रोग्राम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिल्म संगीत के सफर की शुरुआत में हमने चुना है आज आपके लिए फिल्म युवा से ये गीत, मधुश्री और एआर रहमान की आवाज में। कभी नीम से कड़वाहट, कभी शहद से मिठास है, ये जिंदगी भी अजीब है, इसके कितने रंग और एहसास हैं। खो जाते हैं कुछ पल तलखी में, तो कुछ में प्यार की बहार है, यही तो जीने का असली फलसफा और मजा है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पुलिस?
4: मिस सीमा
2: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
8: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
9: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: चलिए एक बार फिर से तय करते हैं साथ में मिलकर फिल्म संगीत का ये सफर। फिल्म धूप का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जो 2003 में रिलीज हुई थी। निदा फाजली ने लिखा इस बेहद खूबसूरत गीत को। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये धूप एक सफर है, इसे मुकद्दर मान लें, अगर थके नहीं कदम तो मंजिल तक पहुँच सको तो चलो।

FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र FM रेडियो लेक सिटी शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई और सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।

0: जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का सबसे पहले सुनते हैं ये गीत नया दौर फिल्म से। ये देशभक्ति रचना आपको सुनवा रहे हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: नया दौर फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे आवाज मोहम्मद रफ़ी की थी। बलवीर की आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और बलवीर की, साहिल लुधियानवी की रचना थी और ओपी नैयर की तर्ज थी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर। लीजिए अब सुनिए सावन की घटा फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी का लिखा गीत, OP नैयर की तर्ज़।

जयमाला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में सावन की घटा फिल्म का गीत। इसे लिखा था SH बिहारी ने, संगीत से संवारा था OP नैयर ने। दिल ही तो है, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अब आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की। ये बेहद खूबसूरत कव्वाली आपने सुनी। आवाज़ें थीं आशा भोसले और साथियों की, से साहिर लुधियानवी ने लिखा था और रोशन ने थर्स बनाई थी।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: हैं?
1: है नहीं,

0: हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: जाली उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: धन जवान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए अभिमान फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभिमान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इसका जयमाला कार्यक्रम में आइए लेते हैं बहुत छोटा सा अंतराल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

पाकिजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी। कैफ भोपाली ने इस गीत को लिखा था, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गोरा और काला फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

राग जय जयवंती पर आधारित सीमा फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की ही आवाज़ से गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और अब राग यमन पर आधारित एक गीत आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म से। ये आवाज़ भी लता मंगेशकर की है, साहिर लुधियानवी की रचना है, संगीत एस टी बर्मन का।

राग यमन पर आधारित बहुत ही सुंदर सी रचना आपने मुनीम जी फिल्म से सुनी, लता मंगेशकर की आवाज में। इसे साहिल उद्यानवी ने लिखा था और एस टी वर्मन ने धुन बनाई थी। राग बिहाग पर आधारित ये रचना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। रचनाकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर टी बर्मन। फिल्म का नाम आपकी कसम।

आपकी कसम फिल्म की रचना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुनी। इस रचना को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था आरटी बर्मन ने। ये रचना राग बिहाग पर आधारित थी। इसी रचना के साथ ही आज का राग अनुराग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अशोक व्यास की लिखी झलकी एक कुंवारा। निर्देशक हैं अरविंद माथुर।
1: ला ला ला ला ला ला। ओए, माँ बदौलत तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाए और तुम अब तक बैठे हो मुंह लटकाए गंभीर चुप्पी। अच्छा है प्रयास, अरे शादी के बाद की जिंदगी का अभ्यास।
2: ओफो, बंद करो बकवास, मत करो एक दुखी का उपहास। अरे दोस्त, इस तरह की दिल लगी से अब क्या होना है? नहीं हो रही शादी, कमबख्त इसी बात का रोना है।
1: अबे रोना है तो करता क्यों नहीं शादी?
2: कर लूं?
1: हाँ हाँ कर ले।
2: हाँ हाँ

0: कर ले। अरे पर करूं किससे, तुझसे?
1: भाईजान भाईजान, लड़कों की शादी लड़कियों से होती है।
0: अरे यही तो है संकट।
1: संकट? अरे संकट कैसा? अबे जिस नाजनी पर दिल आए, जिस हसीना को दिल चाहे, वहीं हरी का नाम ले और हाथ उसका थाम ले।
0: हाथ थाम लूं मैं? हाँ? और वो भी लड़की का? अरे अरे ये जानता है तू अच्छी तरह, लड़कियों के सामने मैं नहीं रहता, कहीं गुम हो जाता हूँ, धड़कनों के बहाव में कहीं खो जाता हूँ।
1: अरे अरे ये तो खोने लगा। ओ खोने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे अरे पर ये हाथ में पत्र कैसा, जरा बताना।
0: नहीं,
1: अरे इस पत्र के साथ तुम्हारा शर्माना घबराना, जरा देखे ऐसा क्या है इसमें फसाना।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: वाह वाह वाह, क्या खूब पैगाम है। अरे भेजने वाला सेठ दौलत राम है, शादी गुणवंती के साथ, साक्षात कार्य दामाद। मुबारक रमन जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले के इस तोहफे को स्वीकार ले, बाप बेटी दोनों को शीशे में उतार ले।
0: ओहो मजाक ना करो, मजाक ना करो, इतने अहम सवाल से तुम नहीं जानते वो कितने आधुनिक है, कैसे रहते हैं, और गुणवंती भी तेज तर्रार है, सब उसको कहनी कहते हैं। इस मॉड शॉट कहनी के सामने मैं जैसे तैसे अपना शरीर तो ढो लूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा सख्त होते होठों को, उसके सामने कैसे बोलूंगा।
1: ओहो, तुझको गुंगा होने से बचाना होगा, इसके लिए मुझे कोई चक्कर चलाना होगा।
0: चक्कर? क्या कोई चक्कर चल सकता है? क्या इस समस्या का भी हल निकल सकता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं हो रहा विश्वास, क्या मुझे करना पड़ेगा उपवास?
1: नहीं प्यारे, हमें करनी होगी रिहर्सल, यानी कि पूर्वाभ्यास।
0: रिहर्सल? पूर्वाभ्यास? ये कैसी पहेली?
1: सुन सुन, कुछ देर में यहाँ आने वाली है मेरी सहेली।
0: तेरी सहेली यानी सोनिया? सोनिया और रिहर्सल? नहीं समझ पाया कुछ, होने लगी है बेचैन सी हलचल।
1: ना समझ बालक, बीत गया समय अब तेरे डरने का, हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का।
0: वो कैसे महाराज?
1: वो ऐसे, समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल।
0: ये कमरा मेरी ससुराल? ओहो वो ही बुझो तो जाने वाला हाल।
1: तो कम आईक्यू वाले सज्जन, सीधे शब्दों में कहता हूँ समझाकर, इंटरव्यू होगा पहले तेरा यहाँ सोनिया को गुणवंती बनाकर। लगता है आ गई सोनिया। हेलो सोनिया।
2: हेलो संजय।
1: सोनिया अभी बात हो ही रही थी तुम्हारी, वो देखो मुंह फेरे खड़े हैं मजबूर ब्रह्मचारी, आओ इधर जाने मन। सोनिया ये है रमन।
2: रमन? ओह सुना है आप लड़कियों से बहुत कतराते हैं।
1: हाँ, इनकी समस्या ये ही है कि ये घबराते हैं।
2: कीजिए समस्या का खुलासा।
1: एक कुंवारा शादी का प्यासा, एक इंटरव्यू पर टिकी हुई है आशा, लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है इनका तमाशा।
2: तो अब
1: देवी हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे, तुम बनो गुणवंती और हम सेठ दौलत राम का रूप धरेंगे।
2: ओह हेलो डैडी।
1: हेलो ज्ञानी बेटे। तो रमन जी कुछ पल के लिए तशरीफ ले जाइए और वापस इस कमरे को अपना ससुराल मान कर आइए।
0: लेकिन संजय वो ये वो।
1: अजी ये वो को बंद करिए, बाहर जाकर कंघे से संवरिए, ससुराल पहली बार आ रहे हूं, अंदर आते समय उतना डरिए।
0: तो मैं चला
1: जाओ, भगवान करेंगे तुम्हारा भला। बड़ा भोला है रमन सोनिया।
2: कौन रमन डैडी, कैसे सोनिया?
1: ओहो आई एम सॉरी। सुनो मैं जा रहा हूं अंदर तुम्हारी मम्मी के।

0: पास शादी का इंटरव्यू देने आएंगे कोई रमन व्यास, जैसे चाहो सवालत कर लेना, बात कुछ जमे तो मुझे खबर देना। मैं आ तो गया हूं धड़कते दिल को संभाले, हेलो भी उनको कहूंगा अगर वो नजर उठा ले। जी
1: आराम कुर्सी पर बैठे मैं देखती रहूंगी यही पेश किताब का, देखे क्या हाल होता है नेगलेक्टेड खड़े खड़े जनाब का।
0: जी जी सुनिए जी सुनिए
1: जी कहिए
0: जी जी जी मैं हूँ।
1: तो मैंने कब कहा कि आप उल्लू हैं?
0: जी
1: जी
0: जी जी रमन नाम है मेरा, वो शादी की बातचीत के लिए बुलवाया गया हूँ।
1: तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं?
0: जी नहीं जी जी जी हाँ जी हाँ, वो मेरा मतलब
1: शादी क्यों करना चाहते हैं?
0: जी वो सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी। वैसे
1: अगर सब लोग शादी नहीं करें तो क्या आप भी नहीं करेंगे?
0: जी नहीं जी जी जी हाँ जी नहीं, वो मेरा मतलब वो जी जी जी।
1: अच्छा अपना मतलब फिलहाल भूल जाइए और शादी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल सवाल के जवाब देने को तैयार हो जाइए। तैयार?
0: जी तैयार।
1: तो ये नारी और पुरुष में आप किसको ऊंचा स्थान देते हैं ये बताइए।
0: ऊंचा स्थान वो हाँ वो जी कभी कभी नारी को और कभी कभी पुरुष को।
1: अच्छा ये नारी वाला कभी कभी कब होता है?
0: जी ये जब पुरुष वाला कभी कभी नहीं होता है।
1: ओह वेरी इंटरेस्टिंग।
0: हाँ जी
1: तो अच्छा बताइए कि शादी से पहले रोमांस के बारे में आपका क्या ख्याल है?
0: शादी के पहले रोमांस यानी नट की तरह रस्सी पे डांस, दोनों तरफ गिरना ही है। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो वैसे मेरा एक दोस्त है संजय, एक्सपीरियंस्ड है, उससे पूछकर आपको बता दूंगा।
1: अच्छा अच्छा बताइए आप तलाक के पीछे क्या वजह मानते हैं?
0: जी तलाक तलाक के पीछे तो बस एक ही वजह होती है।
1: वो क्या?
0: जी वो है शादी।
1: ओह अच्छा अच्छा आपको खाना बनाना आता है?
0: जी खाना जी वो आता तो नहीं है, पर आप कहेंगी तो सीख लूंगा।
1: क्या मैं इतनी अच्छी लगने लग गई? अच्छा मेरी तारीफ में कुछ कहिए।
0: आपकी तारीफ में मैं जी वो जी आप हैं।
1: बहुत खूब यानी कि मैं हूँ। लीजिए डैडी भी आ गए। डैडी मिस्टर रमन कहते हैं कि मैं हूँ।
2: ओहो पर तुम इनके बारे में क्या कहती हो?
1: नॉट बैड चल सकता है।
2: तो मिस्टर रमन तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम तो पास कर चुके हो, फाइनल में सिर्फ एक सवाल है। मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, कभी डांट दे या तुम्हारे कान खींच दे, तुमको थप्पड़ वगैरह मार दे, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे?
0: मेरे कान खींच दे, मुझे थप्पड़ मार दे, बुरा बुरा जी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा।
2: गुड तो गुणवंती बेटी और मिस्टर रमन दोनों प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ एक थप्पड़ का सवाल है।
0: बस बस ये सोनिया जी का थप्पड़ तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, मुझे खाना ही पड़ेगा तो असली गुणवंती का खाऊंगा, रिहर्सल ओवर।
2: हाँ। ओके ओके समाप्त हुआ पूर्वाभ्यास, अच्छा रहा प्रयास, तुम्हारी सफलता की होने लगी है आस। थैंक यू सोनिया, से 3 चीयर्स फॉर रमन व्यास। देखा देखा हमारा फोन भी बोलने लगा है अपनी चुप्पी से निकल के, समझकर हमारे यार की खुशी ट्रिन ट्रिन करने लगा है मचल के।
1: अब उठाकर देखो भी ये क्या समाचार लाया है, जरूर रमन साहब के लिए गुणवंती का बुलावा आया है।
2: क्यों रमन नाम सुनकर ही शर्मा गया? वाह सोनिया मजा आ गया। हेलो कौन? ओहो दिनेश प्रेस रिपोर्टर साहब, आज हमें कैसे याद किया आपने, क्या समाचार है? अबे लड़की भाग गई, 50,000 का।

0: नाम भी लखपति की बेटी। अब भाई मैं लड़कियां भगाने वाला नहीं हूं, यहां तो खुद एक लड़की आई हुई है मुझे भगाने। हाँ हाँ सोनिया यही है, ले बात कर।
1: हेलो भाई साहब, किसको भगा दिया आपने? क्या सेठ दौलतराम की बेटी गुणवंती?
0: क्या गुणवंती भाग गई? आए, आए, अब मेरा क्या होगा? आए, मेरी शादी गुणवंती भाग
2: अरे
1: अरे अरे, ये तो बेहोश होने लगे।
2: अरे रमन रमन, अरे क्या हुआ तुझे? सोनिया पानी लाओ। रमन रमन क्या हुआ
1: ये
2: तुझे?
1: लो पानी।
0: आंखें खुलने लगी हैं, रमन होश में आ रहा है। रमन रख दिया फोन। आए मेरी ट्रेजेडी और तुम्हारी कॉमेडी, चल प्यारे क्वारे, एक नई गुणवंती, एक नया डैडी।

एक कुंवारा, अभी आप सुन रहे थे अशोक व्यास की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे अरविंद माथुर। ये थी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कार्यक्रम विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार थे राम संपत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब एक छोटा सा ब्रेक।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मित्रा की है अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस संदेश के पहले चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अक्सर फिल्म का गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत था। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा

0: के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजना को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा

0: आ जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

तो बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद

0: के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हे धन जो

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था, OP नैयर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। सविता सिंह को नमस्कार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने

मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बाप बाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायत ही नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है, और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

विषधर को लटकाए अपनी पार्वती को रे जाने।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतबल ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: देहाती हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दो ला, नहाओ के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, नहीं मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा, ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: आग में तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफ़े नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक,

0: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
1: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
0: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
1: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
0: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
1: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
2: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
3: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष है, वो बुलंदी है, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिर कर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाए। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
2: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: छायांकित इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्ही ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहां एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विकटर मरे।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र FM रेडियो लेक सिटी। अब से कुछ ही पलों में आपको सुनाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22